मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान

0: से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुभारंभ कर रहे हैं समूह स्वर में मातृ वंदना से। रचना कन्हैया लाल ब्रजेश की है।

श्रुति साडोलिकर के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए अब सुनिए दिलराज कौर के स्वर में नानक देव की रचना।

0: छाया गांगुली के गाए सूरदास के इसी भजन के साथ आज की वंदना संपन्न होती है। ये आकाशवाणी रायपुर है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्री अंशुधर द्विवेदी का है।
1: मानव की ये प्रवृत्ति रही है कि जो कार्य करने से उसे रोका जाता है, उसे करने की इच्छा उसमें प्रबल होती है। बचपन में जब कहा जाता है कि गर्मियों में दोपहर के समय बाहर मत निकलना, तब सहज ही बालवीर इसका उल्लंघन करने निकल पड़ते हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसे नियमों को देखते हैं जिनके प्रति बहुतेरे लोगों की राय यही है कि ये तोड़ने के लिए ही बने हैं। जैसे दुर्घटनाजन्य क्षेत्र, जहां सेल्फी न लें, यहां विज्ञापन चस्पा करना मना है, फूल तोड़ना मना है, शोर न करें, आगे अस्पताल है, यहां थूकना मना है, यहां झील की गहराई अधिक है, जल में न उतरें, पुल के ऊपर से पानी बहने पर नदी पार न करें, ट्रेन की गेट या छत पर बैठकर यात्रा न करें, उचित दूरी का टिकट लेकर ही यात्रा करें इत्यादि। यहां हम भूल जाते हैं कि ये नियम हमारे जीवन की सुरक्षा, लोगों के जीवन जीने के अधिकार की रक्षा, प्रकृति और मानव के टकराव को रोकने और संतुलन बनाए रखने के लिए हैं। नियमों का पालन तभी नहीं होता जब व्यक्ति सोचता है कि वो अपने आप में किसी भी कार्य को करने में सक्षम है और उसे सहायक और सहायक उपकरणों की आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक क्षेत्रों में घटित अधिकांश घटनाओं में ये एक प्रमुख कारण होता है। यातायात के नियम भी वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, किंतु लोगों ने इन नियमों को कर संग्रह का माध्यम और अपने वाहन चालन के कौशल पर प्रश्न चिन्ह समझ लिया है। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग वाहन चलाते समय अनिवार्य है, क्योंकि ये चालक की सुरक्षा के लिए है, न कि जुर्माना वसूल करने के लिए। इनका पालन न करने पर सरकार द्वारा जुर्माने का प्रावधान किया गया है, जिसकी दरों में कुछ समय पूर्व अधिक वृद्धि की गई, जिसका उद्देश्य अर्थदंड का प्रयोग कर नियमों के पालन में बढ़ोतरी करना था। नागरिकों द्वारा इसका विरोध समझ से परे था। यहां हमें समझने की जरूरत है कि यह जुर्माना प्रत्येक वाहन चालक पर अधिरोपित नहीं किया जाएगा, बल्कि ये यातायात नियमों का पालन न करने वाले चालकों, वाहन मालिकों से वसूला जाएगा। नियमों को तोड़ने वालों के मुख से हम अक्सर सुनते हैं, मेरे अकेले पालन करने से क्या होगा, सब तोड़ते हैं, नियम देखें कि अपना काम। ऐसी सोच विष से कहीं अधिक घातक है। यह नियमों के उल्लंघन का आधार तैयार करती है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के नियम तोड़ने से बाकी वैसा करने के लिए प्रेरित होते हैं, वैसे ही अगर एक व्यक्ति नियम का पालन करे तब बाकी भी उसका अनुसरण करेंगे। नियमों की पूर्णतः पालन के लिए उन्हें सरल और व्यावहारिक बनाना होगा। ये तभी संभव है जब लोगों के बीच इनके महत्व का प्रचार प्रसार मातृ और सरल भाषा में किया जाए। यहां हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि प्रचार का स्वरूप और माध्यम कैसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा हाल ही में चलाया गया एक कार्यक्रम, जिसमें सियान यानी बुजुर्ग के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के तहत सियान की वेशभूषा में कलाकार ट्रैफिक सिग्नल पर राहगीरों को नियम की जानकारी और उनके पालन की समझाइश देते रहे। इसके पहले भी हर सिर हेलमेट, फूल देकर, चालान की जगह हेलमेट देकर, यम बन भय दिखाकर, ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं जो अपने उद्देश्य की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। नियम का पालन न कर हम परोक्ष रूप से यम को निमंत्रण देते हैं। नियम स्वतंत्रता का हरण नहीं करता, बल्कि वो लोगों को अनुशासित कर उसके दायरे को विस्तारित करता है। नियम अपमान नहीं, सम्मान है, जो सभी को सुरक्षित जीवन यापन करने का अवसर देता है। जिस प्रकार नियमों में बंधे सूत्र हल देते हैं, छंद कर्णप्रिय साहित्य का सृजन करते हैं, ऋतुएं जीवन को बनाए रखती हैं, विज्ञान नवीन अनुसंधान करते हैं, उसी प्रकार नियमों में बंधा समाज अपनी प्रगति को सुनिश्चित करता है। इसलिए जो नियम बने हुए हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही समय समय पर जब नवीन या संशोधित नियम आएं, तब उनका मुक्त कंठ से स्वागत करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जागरूकता फैलाकर उनके निर्माण को सार्थक बनाना चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख श्री अंशुधर द्विवेदी का था। ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गान।

0: श्री रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आज की कड़ी में मुख्य स्वर सुरेश वाटकर का था। आकाशवाणी की इस संगीतमय प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 6:45 हुए हैं। कृषि चर्चा में लीजिए सुनिए पौधों में जैविक तनाव प्रबंधन। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी।
1: किसान भाइयों, जो है आज के जो टॉपिक है जैविक तनाव प्रबंधन कैसे करें, तो सबसे पहले जैविक तनाव होता क्या है। जब किसी फसल में या सब्जियों में कोई सजीव जीव द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जब कोई इंसेक्ट या कीड़ा पत्ती को चबाता है या काटता है या पत्ती के या पौधे के रस को चूसता है, उसके कारण पौधों पे तनाव उत्पन्न होता है।

0: साथ में कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक और जीवाणु विषाणु, ये भी कोई न कोई बीमारी उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, तो उसके कारण भी पौधों में तनाव उत्पन्न होता है। इस तनाव के कारण पौधों की जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित होता है और उनकी वृद्धि विकास उत्पादन क्षमता सारा प्रभावित होता है। इसके साथ साथ जब कोई पशु या आदमी पत्ती को तोड़ता है या पत्ती को डैमेज करता है या पौधे को डैमेज करता है, उसके कारण भी जैविक तनाव पौधों में उत्पन्न होता है। तो इस जैविक तनाव को प्रबंधन के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कीड़े हैं जो पत्तियों को काट रहे हैं, चूस रहे हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारे पौधों की पत्तियों में छिद्र दिखाई देते हैं। ये छिद्र कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो पत्ती को काटते हैं और काटने के बाद उसको खाते हैं। तो जो इस तरह के कीड़े होते हैं उसके कारण पत्ती का जो आकार होता है वो पूरा डैमेज हो जाता है, जिसके कारण पत्ती का जो काम होता है, पत्ती हमारे पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती है, ये हमारे पौधों का रसोई घर होता है, क्योंकि पौधे सारा भोजन इसी पत्ती से ही बनाते हैं। जब इस पत्ती को कोई कीड़े डैमेज करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं तो इस किचन जिसको हम बोलते हैं या भोजन की फैक्ट्री बोलते हैं, ये हमारा जब डैमेज होता है या नुकसान होता है तो पूरी तरह से भोजन पौधा नहीं बना पाता। जब भोजन पौधा बनाने में असमर्थ होता है तो पौधों को जो एनर्जी मिलनी चाहिए जिसके कारण पौधा अपनी वृद्धि विकास फूल का आना फलों का लगना ये सारे जो प्रोसेस है पौधों के, ये सारे प्रोसेस डैमेज हो जाते हैं या नुकसान हो जाते हैं। उसके कारण हमको ध्यान देना चाहिए कि कुछ ऐसी कीड़े भी होते हैं जो कि पत्ती में छिद्र नहीं करते, पत्ती को खाते नहीं है, लेकिन उसके अंदर का रस को चूस लेते, जिसके परिणाम स्वरूप पौधा हमारा सूख जाता है। जब पौधा सूख जाता है तब भी वो पौधे की पत्तियां भोजन बनाने में असमर्थ हो जाती है। जब भोजन बनाने में पत्तियां असमर्थ हो जाती हैं तो उनको वृद्धि विकास के लिए ऊर्जा नहीं मिलती है, क्योंकि सारा भोजन हमारे पौधे पत्तियों में ही बनाते। जब पत्ती किसी भी कारक के द्वारा प्रभावित हो जाती है या डैमेज हो जाती है तो भोजन प्रोसेस जो होता है वो पूर्ण तरह से बाधित हो जाता है। उसी के साथ साथ कुछ पशु होते हैं जो हमारे पौधों की पत्तियों को खा जाते हैं, या कुछ ह्यूमन भी होते हैं जो चलते चलते पौधों की पत्तियों को डैमेज करते हैं, तोड़ते हैं। उनको ये लगता है कि ये पौधा की पत्ती तोड़ने से क्या नुकसान होता है, लेकिन पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक पत्ती को बनाने में पौधों की बहुत सारी एनर्जी लगती है, ऊर्जा लगती है, जिससे कि वो भोजन को वो पत्ती को बनाता है और उसको रिपेयर करता है, और उसके कारण जब पत्ती हमारी डैमेज हो जाती है तो भोजन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। जब पौधा भोजन नहीं बना पाता है उसके कारण उसकी वृद्धि विकास और फूल फल आना सारा प्रभावित हो। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि जैविक प्रबंधन में हम जब किसी पौधों पे कीड़े दिखाई दें उनकी रोकथाम के लिए जो उपयुक्त दवा है उसका उपयोग करें। कुछ पत्तियां सूखती हैं जिसके कारण हमको पता चल जाता है कि उसको रस चूसने वाले कीड़े लगे हैं, उनकी रोकथाम करनी चाहिए। पौधों को पशुओं से जो नुकसान होता है उसको रोकथाम करना चाहिए, और ह्यूमन बींग को भी अननेसेसरी पौधों की पत्तियों को डैमेज नहीं करना। अगर डैमेज करते हैं तो पौधों में जैविक तनाव उत्पन्न होता है। धन्यवाद।
1: पौधों में जैविक तनाव प्रबंधन, इस विषय पर अभी जानकारी दे रहे थे डॉ. शशि प्रकाश तिवारी। कार्यक्रम था कृषि चर्चा, आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण, श्रोताओं आइए आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज शाम 4 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 से

7:30 तक, रात 8 बजे से 8:45 तक और फिर रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:30 पर किसानवाणी में आज की सलाह का विषय होगा वर्षा के पहले पशु के आवास चारा के प्रबंधन और रोग राई और टीकाकरण। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर भूपेंद्र सिन्हा, विकास खंड पशु चिकित्सा अधिकारी कुरुद। और सुनिएगा 12 वर्ष में कृषि में उपलब्धि, खेती की लागत घटाने का आधार नैनो तरल उर्वरक, इस विषय पर चर्चा। सुबह 7:05 पर हम प्रस्तुत करेंगे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। बच्चों के कार्यक्रम बालवाटिका में सुबह 8:30 पर आज के आकर्षण होंगे बेरा के बाद नशा नाश के कारण आए एकर ले दूर रहो। क्रम फुलवारी में सुनिए बाल कलाकार कुमारी अरुणिमा शर्मा ले शीतला शुक्ला के गोट बात, साथ ही सुनिए रोचक जानकारी दुनिया के और बाल गीत। सुबह 9 बजे सुनिएगा कार्यक्रम प्रगति के सोपान में नमो ड्रोन दीदी योजना विषय पर ड्रोन दीदी शांति विश्वकर्मा से प्रकाश उदय की बातचीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 पर कलाकार होंगे फिरित पटेल और उनके साथी। गैर फिल्मी गीत गजल और कव्वालियों के कार्यक्रम स्वरधारा में सुबह 10 बजे सुनिएगा कैलाश खेर और इला अरुण को। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने। श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। दोपहर 12 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुनिएगा शाम 5 बजे। जनजातीय संगीत के कार्यक्रम लोक सुधा में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा मेहर सिंह और साथियों के स्वर में गोंडी गीत और दिलीप सिंह और साथियों के स्वर में हल्बी गीत। शहरी महिलाएं अपना कार्यक्रम बिंदिया सुनेंगी दोपहर 1:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा नशा नाश का मूल है और योग रखे निरोग। सुनिएगा शीर्षक गीत और घरेलू टिप्स। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:10 पर। इसमें सुनिए अपन गोठ, फोन इन कार्यक्रम हेलो मितान और अंतस के आरओ। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत सुनिएगा रात 10:45 पर और चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा सुबह 9:15 पर। 10:30 दोपहर 1:05 2 बजे और 2:30 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

हर बात में महके हुए जज्बात की खुशबू, याद आई बहुत पहली मुलाकात की खुशबू, छुप छुप के नई सुबह का मुँह चूम रही है, इन रेशमी जुल्फों में बसी रात की खुशबू, मौसम भी हसीनों की अदा सीख गए हैं, बादल है छुपाए हुए बरसात की खुशबू। हाँ श्रोताओं, बरखा की बूंदों का स्पर्श पाकर महक

उगती हुई माटी की खुशबू दुनिया की सारी महक से जुदा होती है। कोई इत्र नहीं, कोई सुगंध नहीं, कोई भी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। आकाश में बादलों का रूप धर धरती पर बरसती इन अमृत बूंदों को सहेजना तो कोई मिट्टी से सीखे। मिट्टी जिसने धरा है रूप कई प्रकार का, नदी, पहाड़, जंगल, पेड़ पौधे, जानवर हों या इंसान, सब मिट्टी के ही तो पुतले हैं। मिट्टी की महानता का विस्तार अपार है श्रोताओं। तो चलिए ढेर सारी बातों के साथ करते हैं आज के नमस्कार रायपुर की शुरुआत। आप सबके स्वागत के साथ स्वीकार कीजिए आज के कार्यक्रम में अपनी दोस्त प्रवीणा त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार।

शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, नैतिकता और सत्य की खोज होना चाहिए। और ये ओजस्वी विचार थे स्वामी दयानंद सरस्वती के। उन्होंने कहा था कि ज्ञान पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है श्रोताओं कि ज्ञान के प्रकाश से प्रत्येक इंसान का जीवन आलोकित होना चाहिए, क्योंकि यही वो सूर्य किरण है जो जीवन के अंधेरों में मनुष्य को राह दिखाती है। शिक्षा न केवल स्वयं के बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशवान बनाती है। इसीलिए शिक्षित बने, महान विचारकों को पढ़ें और जीवन के कठिन रास्तों पर सुगमता से चलकर स्वयं को सफल बनाएं।

श्रोताओं, बदलते वक्त के साथ शिक्षा का पैटर्न भी बदला है। अब शिक्षा बौद्धिक के साथ साथ व्यावसायिक स्तर पर भी उपलब्ध है, जिसका चयन कर विद्यार्थी स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अपनी शिक्षा को रोजगार मूलक बना सकते हैं। ऐसे ही एक विषय है पर्यटन यानी टूरिज्म, जो कि बदलते वक्त के साथ काफी प्रचलित हो रहा है। टूरिज्म क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं के बाद ट्रेवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूर ऑपरेशन या एयर टिकटिंग से जुड़े डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स भी किए जा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट नोएडा, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कोर्स कर सकते हैं। तो इच्छुक विद्यार्थी इन संस्थानों में अपने लिए उपयुक्त कोर्स, जिसमें बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, BBA इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स इन एयर टिकटिंग एंड टूर ऑपरेशन और MA MBA इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का चुनाव कर सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर आकार दे सकते हैं। तो इस जानकारी के बाद आइए सुना जाए ये खूबसूरत गीत।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, साइबर अपराध से जुड़ी घटनाओं की खबरें प्रतिदिन हमें पढ़ने और सुनने मिल रही हैं। साइबर अपराध से हम कैसे बच सकते हैं, हमें मोबाइल के उपयोग के समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, इस संबंध में बता रहे हैं रायपुर पुलिस कमिश्नर की ओर से एडिशनल DCP क्राइम रायपुर।
1: डिजिटल अरेस्ट, इसमें ठग अपने आप को पुलिस का अधिकारी या कस्टम का अधिकारी

0: बताकर कॉल करता है और इनके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि आपकी निजी बैंक अकाउंट आधार कार्ड का यूज़ इनलीगल एक्टिविटी में हो रहा है, जैसे हवाला का पैसे के ट्रांसफ़र पे या ड्रग्स के व्यापार पे, और इस प्रकार आपको भय या डर के आधार पर आपके साथ ठगी करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आम व्यक्ति समानता डर जाता है, तब ठग उन्हें वीडियो कॉल करता है और यह बोलता है कि आप अपनी लीगल प्रोसेस के लिए एक एक्स या वाई किसी सिटी पे पिछले 2 घंटे के अंदर पहुंचिए। जब आप उस सिटी में पहुंचने में असमर्थ होते हैं तब वह बोलता है कि जब तक लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता आप वीडियो कॉल में बने रहेंगे, और लगातार आपको डरा और धमका कर आपके साथ ठगी करने का प्रयास करता है। कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आप हमेशा सतर्क रहें। कोई भी पुलिस ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर वीडियो कॉल पे कोई भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराता। यदि फिर भी आपके साथ किसी प्रकार की ठगी होती है तो आप 1930 पर कॉल कर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर, और मैं हूं आपके साथ प्रवीणा। और अब एक रोजगार सूचना आपके लिए। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 3 जुलाई तक कर सकते हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार 4 से 6 जुलाई तक किए जा सकेंगे। परीक्षा की संभावित तारीख 30 अगस्त है। संचालनालय द्वारा सरगुजा और बस्तर संभाग में कुल 15 पदों की भर्ती की जाएगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन शास्त्र विषय के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से ओटी एनेस्थीशिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है। और इस जानकारी के बाद अब वक्त है एक गीत का।

और श्रोताओं, अब आपको बता दें कि जुलाई माह में रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में रिमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा और जिसकी वजह से कुछ ट्रेनों का परिचालन बाधित होगा और इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर गुजरने वाली कुछ एक्सप्रेस गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। इसमें 16 से 19 जुलाई को 18238 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस वाया मथुरा बयाना सोगरिया रूठियाई बीना मार्ग होकर बिलासपुर आएगी। 20 जुलाई को 12808 हजरत निजामुद्दीन विशाखापट्टनम समता एक्सप्रेस वाया मथुरा बयाना सोगरिया रूठियाई बीना मार्ग होकर विशाखापट्टनम जाएगी और 19 जुलाई को 20808 अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड एक्सप्रेस वाया मथुरा बयाना सुगरिया रूठियाई बीना मालखेड़ी मार्ग होकर जाएगी। तो अगर इन स्थानों से होकर आप ही यात्रा करने वाले हैं तो ये सूचना आपके लिए है। और अब वक्त है एक बहुत मधुर गीत।

साथियों, हमारा और आपका साथ पल दो पल का भी अगर है तो बेहद खूबसूरत है। और इसी बात के साथ अब एक और रोजगार सूचना हमारे उन श्रोताओं के लिए जो सरकारी नौकरी में भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक सहायक भर्ती 2026 के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट लाइब्रेरी के पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 जुलाई तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती के तहत लाइब्रेरी असिस्टेंट के कुल 20 पद भरे जाने हैं। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक होना अनिवार्य है। अन्य राज्यों के सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष तय की गई है। स्थानीय महिलाओं की 50 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर के पते पर भेज सकते हैं। इसे एक बार फिर से सुन लें श्रोताओं, रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर के पते पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस पद के लिए आवश्यक योग्यता रखते हैं तो प्रयास किया जा सकता है। और आइए आप सुनते हैं ये गीत कि जो करना है जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। श्रोताओं, थोड़ी सी बातें और रह गई हैं, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

ये मधुर गीत और ऐसे ही अनेक नायाब गीतों की धुनों को रचने वाले महान संगीतकार मदन मोहन का जन्म आज ही के दिन सन 1924 में इराक के बगदाद शहर में हुआ था। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। युवावस्था में सैनिक का कर्तव्य निभाते मदन मोहन का झुकाव जब संगीत की ओर बढ़ने लगा तो वे ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद और लता मंगेशकर, जिन्हें वे अपनी छोटी बहन कहते थे, से अनेक यादगार गजलें गवाने वाले मदन जी शायद हिंदी फिल्मों के पहले ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में गजलों का चलन शुरू किया। राजा मेहंदी अली खान, राजेंद्र कृष्ण और कैफी आजमी की गजलों और गीतों को अपनी अनमोल धुनों में सजाने वाले संगीतकार मदन मोहन की नायाब धुनें आज भी हम सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। मदन मोहन ने अपने ढाई दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। उनकी संगीत रचनाओं का प्रयोग उनके गुजरने के बाद यशराज फिल्म्स की फिल्म वीर जारा में किया गया और उस फिल्म का संगीत भी बेहद मकबूल हुआ। फिल्म दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम करने वाले मदन मोहन जी खुद भी एक शानदार गायक थे। आइए सुने उनकी फिल्म दस्तक का गीत उन्हीं की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
4: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
5: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप एक पड़ाव चयनित किया गया है।
4: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
7: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
8: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। पुशेस फॉर एआई ड्रिवन टीबी एलिमिनेशन एंड स्ट्रॉन्गर साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स। Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. US federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
11: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TV Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. With Rohan and Saklin, Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
10: The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipulekh Pass in Pithoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. According to the Dharchula administration in Pithoragarh district, the first batch of Indian traders will leave for the Takla Court market in Tibet tomorrow. More from our correspondent.
4: Dharchula Subdivisional Magistrate and Trade Officer Ashish Joshi said that 26 trade passes have been issued in the first phase, including 17 traders and 9 assistants. A customs office has also been set up at Gunji to ensure the smooth conduct of trade. He said that more than 103 traders have applied for trade passes. In the second phase, another 25 traders will be granted permission. It may be recalled that the border trade between India and China was suspended in 2019-22 due to the COVID-19 pandemic. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
10: Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu will launch the country's first hub-and-spoke international air service from Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi, today. After starting of this service by Air India, Varanasi will be the first spoke city to be connected to the airline's international network through Delhi. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the country's constitution was trampled over in 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. A report.
3: On this day in 1975, then President Fakhruddin Ali Ahmad proclaimed a national emergency under Article 352 of Constitution, citing threats arising from internal disturbances. The emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. As a result, the executive assumed sweeping powers and greater central control was exercised over state authority. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. Citizens were denied the right to seek judicial remedies for violations of these rights. Pre-censorship was imposed on newspapers and even the Press Council of India, the statutory body responsible for safeguarding press freedom, was abolished. Constitutional amendments during that period barred the courts from questioning the president's decision to declare emergency and excluded the election of the Prime Minister and Speaker of the Lok Sabha from judicial scrutiny. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
10: India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting at Gurugram in Haryana from today under its BRICS Chairship 2026. The two-day meeting will focus on three key priorities: energy security and sustainability, energy access and equity, and technology and innovation. Energy ministers and senior officials from all 11 BRICS member countries will participate in the two-day meeting to strengthen cooperation in key areas. India's BRICS chairship this year is guided by the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A federal judge has permanently barred President Donald Trump's administration from implementing most of his first executive order on elections, including a proposal requiring documentary proof of citizenship for voter registration. The ruling by U.S. District Court Judge Denise Casper in Boston effectively converts a preliminary injunction she issued a year ago, in which she temporarily blocked many of Trump's efforts to overhaul elections, into a permanent ban. Judge Casper ruled that the Constitution gives states and Congress, not the president, the authority to regulate elections, adding that Trump's requirements violated the separation of powers. International Atomic Energy Agency has said that it will carry out inspections in Iran under the country's preliminary peace agreement with the U.S. Talking to reporters in Japan, Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, said they will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The head of the Global Nuclear Watchdog said the agreement signed last week explicitly mentioned that the dilution of Iran's highly enriched uranium would be carried out under International Atomic Energy Agency's supervision. However, Iran's deputy foreign minister said access to its damaged nuclear facilities and nuclear material would only be addressed within the framework of a final deal with the US. In Venezuela, a powerful earthquake of magnitude 7.5 hit Yumari town in the state of Yaraqui this morning. According to the U.S. Geological Survey, this earthquake was the second event in a doublet. Earlier, an earthquake of magnitude 7.2 hit San Felipe in Venezuela, which was the first event in a doublet. This magnitude 7.2 foreshock was followed just 39 seconds later by a larger 7.5 main shock. As per initial reports, multiple structures have collapsed in Caracas, Venezuela. The quake was strongly felt across a large part of Venezuelan territory, triggering alerts in the civil protection systems of the South American nation. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will embark on a three-day official visit to London, United Kingdom, today. The Commerce and Industry Ministry said that the visit comes ahead of the entry into force of the landmark India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and the companion Double Contribution Convention on 15th of next month. During the visit, Mr. Goyal will hold a high-level bilateral meeting with the United Kingdom's Secretary of State for Business and Trade, Peter Kyle. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan and his party on their victory in the recently held parliamentary elections. During a telephone call received from Mr. Pashinyan, Prime Minister Modi also thanked him for facilitating the evacuation of Indian nationals stranded in Iran following the recent developments in West Asia. The two leaders reaffirmed their commitment to further strengthen the warm and multifaceted partnership between India and Armenia. BJP National President Nitin Naveen has sent specially curated boxes of premium Indian mangoes to diplomats from 82 countries posted in the national capital as part of a unique cultural outreach initiative. The hampers featured four of India's most celebrated varieties, including Gir Kesar, Banganpalli, Dasheri and Banarasi, each known for its distinctive taste, aroma and regional identity. Mr. Naveen sent a personal note conveying greetings and underlining the cultural significance of the fruit, which he described as a symbol of hospitality, friendship and India's agricultural legacy. Moving on to the world of sports, India will take on Bangladesh in the Group A clash of the ICC Women's T20 World Cup at Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Here is more in the sports roundup.
12: Harmanpreet Kaur led women in blue are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. India began their T20 World Cup campaign with consecutive wins against arch rivals Pakistan and Netherlands before they lost against South Africa in their last match. On to men's cricket, a 2-match multi-day series between India A and Sri Lanka A will begin in Galle, Sri Lanka this morning. Dhruv Jurel has been entrusted to lead India A side, who finished a brilliant IPL campaign recently for Rajasthan Royals. Next we have from football, where Morocco stormed into the knockout rounds, beating Haiti 4-2 in an entertaining Group C clash in Atlanta this morning. Haiti will exit the tournament frustrated to not have come up with more. Earlier, Vinicius Jr.'s 2 goals helped 5-time World Cup champion Brazil beat Scotland 3-0 in Miami to advance to the knockout stage as the Group C winner. Meanwhile, Qatar got eliminated from the World Cup after a 3-1 defeat against Bosnia and Herzegovina in Seattle. With this win, Bosnia have kept their World Cup campaign alive, relying on other groups to reach the round of 32 for the first time in their history. Earlier today, Ruben Vargas and Johan Manzambi scored to guide Switzerland to a 2-1 victory over Canada in their Group B match in Vancouver. Last we have from hockey, where a 24-member Indian junior women's squad has been announced for the exposure tour to United Kingdom scheduled for next month. Under its new coach Tim White, the team will play 7 matches across Scotland and England as part of its preparations for upcoming international competitions, including the Junior Asia Cup. The young squad will be led by captain Khedem Shilema Chanu. Chirag Jha from Sports Desk.
10: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan and Goa, Maharashtra, Telangana, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. The weather agency has forecast thunder squalls over Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Marathwada, West Madhya Pradesh and West Rajasthan. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Chandigarh, Haryana, Jammu and Kashmir, Ladakh, Punjab, Uttarakhand and parts of the northeastern region during the next 2 to 3 days. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
13: Thanks, Shagun. All dailies lead with Iranian President Masoud Pezeshkian's formal invitation to Prime Minister Modi to attend the former Supreme Leader's funeral. Iran invites Prime Minister for Khamenei's July funeral. India yet to decide, writes the Tribune. Shiv Sena UBT to lose Parliament office, reports the Pioneer. Oil back at pre-war levels as prices drop below $75, informs the Hindustan Times. Air India Delhi Amritsar flight strays into Pakistan airspace. DGCA initiates action as crew ATC fail to report incident, headlines the Tribune. The Statesman headlines, India-US edge towards trade truce as Jameson Greer concludes Delhi visit. RBI breather for Tata Sons, but asset size hurdle stares, reports the Financial Express. Adding, the new frameworks drops the access to public funds criterion that had been one of the factors pushing Tata Sons into the upper layer classification. The Hindu in its editorial, Razor's Edge, informs that high heat and low rainfall is threatening agricultural produce. The southwest monsoon deficit nationwide has increased from 35% to 43%, and extreme heat has been reducing farm labor productivity. The ideal sustainable strategies are to switch from rain-centric to water-centric organizations, reduce dependence on water-intensive crops, and improve resilience. And finally, a large asteroid called 1997 NC-1 will be visible to stargazers using a small telescope or large binoculars on 27th June. the European Space Agency announced. The asteroid will be speeding along at nearly 9 kilometers a second, posing no threat to Earth, as any chance of an impact has been ruled out, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
10: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffered during emergency. India-China border trade via Lipu Lake Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
0: मीडियम वेव 305.8 एक मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल वाटिका का।

0: बच्चों
1: बालवाटी का सुनैया जब मुनाने संगी मन के स्वागत है आज शीतला दीदी के डहले
2: खुल गए स्कूल
1: छूटे कोनो सब बो जुर मिल जाबो खूब पढ़बो आगू बढ़बो अब्बर नाव कमाबो कापी किताब संग करबो मितानी ज्ञान की अलग जगाबो जिनकी के आधार शिक्षा के अंजोर चारों कोती बगराबो। हाँ भाई हम जानत हन कि आप नाने संगी मन यही संकल्प करके बड़ उछाले स्कूल जावत हो और जतका उछा आप मन ला रही थे ना स्कूल जाए के उतके उछाले दाई बाबू मन घलो तो जुरिया थे बाबू हारो देते ना झटकुन कर देरी हो जाही स्कूल में प्रार्थना शुरू हो जाही और दाई हा पानी बाटल टिफिन ला जरूरत कही थे ना बने ध्यान लगा के पढ़बे लड़ाई झगड़ा झन करबे गुरु जी की बात ला मानबे और हाँ कुछ हो अंते तंते कोनो हा देवे तो झन खाबे सोझे स्कूल जाबे सोझे घरे माबे इति उति भटकबे झन ऐसने कही थे ना और माँ हा तो भाई रोज दिन यही बात ला चेता थे। अब आप मन हा गुनत हो हमन तो अब बड़े हो गए हन अब स्कूल के रद्दा ला बने सुन के जानथन भाई तब भटकबो काबर तनाने संगी हो दाई हा वैसने भटके की बात नहीं कहा थे भलो को कर ये कहना होते कि कहूँ आप मन नशा पानी वाले गलत रद्दम झन चल देवो काबर काबर की आप बाढ़त लईका मन हा हर चीज ला जाने सुने देखे बर बड़ उत्सुक रही थो ऐसे माँ कोनो हा कुछ ऐसे चीज दे देवे कि आपो मन उत्सुकता में आके कैसे लगते कही के कहूँ खा पी लेवो तो का होही अनजाने ज मही सही आप मन माखूर गुटका बीड़ी सिगरेट जैसन जहर के आदि हो सकत हो कई बेर का होते कोनो के देखा सीखी या कोनो कहा है कि बड़ मजा के आए या फिर कोनो कहा है कि ये तो बस के बात नो है तैं ला नहीं खा सकस तो ऐसा चुनौती देवैया गलत नहीं होता ला झोंके पहली ना ऐसा कोनो भी संगी साथी ले दो हाथ के दूरी बना लेवो ये दूरी ओकर नशाले बनावा ओकर ले नहीं भलुक ओला चेताए के जतन करो कि दाई बाबू मन कतका भरोसा करके हमला स्कूल पठोते है ना बने पढ़ लिख के बने होशियार समझदार बनाओ ऐसने एकरे पाए के भेजते ना स्कूल ना कि दाई बाबू के मेहनत उखर भरोसा उखर मया लटोरा ये बात तो सिरतोन है नानी संगी हो कि आज के आप लड़का मन बड़ समझदार हो भाई फिर नानी संगी हो अभी भी बहुत अकन ऐसे चीज है जिला आपला जानना है समझना है कि वह आप मन बर ठीक है कि नहीं है अच्छा नानी संगी हो मन में वहाँ मन बताए मन खेल देखे हो ना कैसे ओकर दुर्गति हो जाते दुनिया के छोड़ो ओला तो अपने छोंस नहीं रहा है तो थोड़ी सोचो भला का यह बने चीज हो ही का नहीं ना एक रिपाय के त नसाला नास के जड़ कही थे एकर चक्कर में पड़ के मन के हा तन मन बुद्धि तीनों च लगवा डर थे आने आने रोग रेम घलो झपा जाते घर परिवार समाज ले दुरिया जाते एक मनखे हो के नाते ये हमार जिम्मेदारी बनते ना कि हमन अपन हर फर्ज ला बने ढंग ले निभावन फिर नशा करैया तक खुदे मानसिक तनाव ले ग्रस्त रही थे तो ओहा भला अपन जिम्मेदारी कैसे पूरा करी थोकिन सोच के देखो नाने संगी हो नशा करैया हा भुला जथे कि मानुक जन्म सिर्फ अपन खातिर नहीं भलुक समाज प्रकृति के सेवा और कल्याण खातिर मिले है एक मनखे हा फौजी किसान डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनके ये अमूल जिंदगी ला बचा और बना सकत है तो ऐसा हीरा से ही अमूल जिंदगी ला का नशा करके व्यर्था करना चाहिए का नहीं ना देखो नाने संगियों कभू कभू कैसे देखथन कि घर के सियान मन घलो लईका मन ला पांठे लंपट होते आने आने जिनिस ला बिसाक नाने भर तो भाई उखर मन ले घलो हम लाई कहना है कि कहूँ अनजानेच मा हमन बाल सुलभ मन ला मौकत नहीं देवत हन एकरो थोड़ी विचार करना चाहिए सिरतोन मानो नाने संगी हो ये नशा हाना नाश के कारण आए हमार सोचे विचारिक शक्ति खत्म करके हमला झूठ लबारी चोरी हारिक जाल में फंसा देते है ना फिर हम हाँ ये बात लब बने ढंग ले जाना था नाने संगी हो कि हमार बाल वाटिका के सब बोझिन संगी मन बड़ होशियार है और ये नशा पानी के चक्कर में कब्भू नहीं पढ़ी भलुक जिन को इमा झपाए हैं उमन ला घलो एक दुरियाक जतन करी तो चलो नाने संगी हो काली ना 26 जून के अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस ला मनावत ये परण करो कि नशा पानी ले सदा दुरिया रहना है और दूसर मन ला घलो जागरूक करना है नाने संगी हो देखो बात का हुआ थे नशा पानी के है ना तो अभिन के समय में एक ठीन नशा और जोरदार ढंग ले चला थे वो का है बताओ भला वो है मोबाइल के नशा आप मन जानते हो नाने संगी हो हमार ननपन माँ हमार बूढ़ी दाई मन हा हम भाई बहनी मन ला ना उतियल बेंद्रा बेंद्री कहा है काबर काबर के हमन ना एक जगह बैठन नहीं ये कुरियल वो कुरिया अंगना दुआरी गांव भर माँ कूदत किंदरत रहन त आप मन हा काबर मोबाइल ल धरे मूर्ति बने एक के जगह बैठे रहो भई लइका हो तो प्रमाण देवो, ऊर्जा उमंग उछाह ले भरे हंसत खेलत कूदत लइका पन के। और एकर शुरुआत कैसे हुई, चलो एकर शुरुआत ये बाल गीत संग अभिन कर लेथन।

जवाहर बघेल और संगवारी मन के गाए गीत ला भी सुने नानी संगी हो। और आप मन ल तो भाई सूचना मिले हो ही कि बालवाटी का माँ अपना नानी संगी मन के भागीदारी बढ़ा थे। गीत कविता कहनी के माध्यम ले हमर प्रतिभावान नाने नाने बाल कलाकार मन आकाशवाणी रायपुर में पहुँच के सुघर सुघर रिकॉर्डिंग करावत है और तेला हमन क्रम फुलवारी में सुनावत घलो हन। यही कड़ी माँ आज हमन एक ठिन विशेष रंगारंग फुलवारी सजा के लाए हन जेमा हमन गोट बात करबो बाल कलाकार अरुणिमा शर्मा ले। तो चलो शुरू करन क्रम फुलवारी। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं श्री बीरभान साहू।

0: वाह देखे संगी हो, हमर ये जोन बालवाटिका के फुलवारी हे तेमाना कतका सुघर भरथरी लोकगीत के सुर ह बगरी सभी तापमान जानना चाहत हो ना यतका सुघर जो भरथरी गीत लगाई से वो हमर कौन से संगवारी है ते हमर संगवारी है अरुणिमा शर्मा। हाँ और ये मन रायपुर मेरी थे त चलो इखले थोकिन गोट बात करे जाए। तो सबले पहली तो अरुणिमा अतका सुंदर गाय हो तो ये बताओ कि अभी कौन से कक्षा में अपन पढ़ता हूँ।
1: अभी मैं हाँ पाँचवीं कक्षा ला पास करके छठवीं कक्षा में गए हूँ।
0: अच्छा तो आप मन तो बहुत छोटे हो अभी, तो अभी से ये अतका सुघर गायन के विधाला अपनाएक मन कैसे लगी आप मन के, कहाँ ले आप मन ला ये मन में आई इसके मुला ये गाना चाहिए करके।
1: मैं जब 3-4 साल के रहे हूँ तब से मोर शौक रिस हावे कि मैं बड़े होके एक अच्छा गायक बनो, और मोर मम्मी पापा है तेन देखी सावे कि एला गाय के शौक है तो ओ मन मोला म्यूजिक क्लास में डाली सावे, और ओखर बाद अभी जेन हूँ मैं मतलब अभी अब म्यूजिक सीखा था।
0: अच्छा आप मन संगीत के प्रशिक्षण भी लेवत हो ना अभी। हाँ। तो अभी जैसे आप मन बताओ कि आप लोग बहुत शौक रही से 3-4 साल की उम्र में है ना, जब लड़का मन तुतली तुतली बोलते हैं वो समय से आप मन गायन शुरू कर दे रहे हो।
1: हाँ।
0: तो कौन ला सुन के आप मन ला ये मन लगी इसके मुला भी गाना ही
1: छत्तीसगढ़ी फिल्म मन में मतलब बहुत अकन गायक मन है गाते, और बाहर के जेन बॉलीवुड गायक मन रही थे ओला ओ मन ला भी मैं सुने हवा, और ओखर बाद मोर शौक है जागी सावे ओखर बाद मैं गाय शुरू करे हूँ।
0: आकाशवाणी

0: के भी गीत आप मन सुनत हो
1: हाँ।
0: जिन कार्यक्रम में बजते हाँ। हमार बाल वाटिका में बजते वह गीत ले आप मन मतलब मन लगी सो ही कि ऐसे हाँ। मोला भी गाना है करके
1: हाँ।
0: अच्छा ये बताओ कि जैसे आप शुरुआत करे हो आप मन गाय के तक प्रशिक्षण के समय में जेकर कर आप मन प्रशिक्षण ले हो तो उमन आप ला का बोलिस कि आप ला कैसे टाइप के गाना चाहिए लोक संगीत गाना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत लगाना चाहिए।
1: मोर जेन गुरु रिहिस हावय ओ ह बोलिस हावय कि तेंहा अच्छा तो गाथस लेकिन एखर अउ मतलब प्रैक्टिस करे के बहुत जरूरत है क्योंकि अभी तो लगभग मैं मोर शुरुआत हावय तो अभी तो कुछ नहीं हुए है तो अभी तो मैं छोटे हूँ तो जैसे जैसे आगे बढ़ूँ मोर गला ह खुली अउ मैं अच्छा कर पाऊँ।
0: गला तो आपके बहुत खुले हमार संगवारी मन अभी गीत ला सुनिस तो मन लत पता चल गई कि अरुणिमा तो बहुत सुंदर गाते। अच्छा ये बताओ कि जब आप मन ये गीत संगीत के प्रशिक्षण लेता हो या ये जैसे कार्यक्रम भी करता हो आप मन तो पढ़े लिखे के समय मिल जाते हैं अभी आप मन बताओ पांचवी परीक्षा पास करे हो तक नंबर कैसे आई आप मन के और कैसे पढ़ाई में और ये अपन शौक में कैसे सामंजस्य बिठाते हो।
1: अब मैं अगर गायन ला करत हूँ तो पढ़ाई भी ओकर साथ जरूरी हवे
0: हाँ,
1: तो मैं हाँ दोनों ला बराबर बराबर समय दे के प्रयास करत हूँ और ओकर बाद जिन मोर से हो सके थे वो मैं करत हूँ।
0: तो मम्मी पापा मन के का सहयोग रही थे माँ मम्मी पापा कैसे हेल्प करते आपके।
1: मम्मी पापा मन तो बहुत हेल्प करत थे और उही मन मोला देखी सावे कि ये कुछ कर सकते आगे आगे जाके कुछ कर सकते तो वो मन मोला म्यूजिक एकेडमी में डाली सावे तभी मैं ये सब कर पावत हूँ।
0: अच्छा अच्छा ये बताओ कि जब आप मन ये गीत संगीत के शुरुआत करे हो तो आप ला कैसे मतलब लगी इसके कौन ला देख के आप मन ला लगी इसके मोला भी ऐसे गाना है ऐसे कोई है प्रेरणा आपके।
1: अब जतका मन गाथे सब जन मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा गाना गीत वगैरह गाथे तो सब ला देख के मैं प्रेरणा ला ले हूँ और ओखर सेती मैं गावत हूँ।
0: अच्छा तो एक चीज बताओ कि लोकगीत के ही क्षेत्र में अपन भविष्य बनाना चाहते हो या और कुछ भी आपला करना है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगू बढ़ के।
1: पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तो आगे बढ़ूँ लेकिन मोला एक सपना है मोर कि आगे जाके मोला गायक ही बनना है।
0: अच्छा गायक हाँ, ही बनना है
1: हाँ,
0: तो भाई गीत संगीत ले आप ला का मया है ना तो चलो काबर नहीं एक ठन गीत और सुन ले जाए आपसे
1: हाँ।
0: का गाना चाहत हो अभी आप मन।
1: मैं अभी पचरा गीत लगावत हूँ।
0: चलो भाई तो शुरुआत हो जाए
1: हाँ।

0: गीत भी बड़ा अच्छा लगी इस भाई। अच्छा ये बताओ कि आपके संगीत संगवारी मन तो हुई ही, आप मन गीत संगीत भी के अभ्यास कर थो, पढ़े लिखे में भी घलो ध्यान लगा थो, तो समय मिलते खेले कूदे बर या ओकर मन से ही थोड़ा संग में जाके चलो खेल लेते हो, ऐसे टाइप से मतलब समय मिलते?
1: समय तो बहुत मिलते।
0: अच्छा,
1: पूरा एक घंटा में खेले बर जावत हो।
0: ये तो बहुत अच्छा बात है, हमारे संगवारी मन भी मैं सुनत हुई तो वहूँ मन भाई अपन सौ के संगे संग खेल कूद ला भी घलो अपना है ना। अच्छा ये बताओ जो गायक मन होते ना वो मन अपन गलत बड़ ध्यान रखते, तो अभी आप मन छोटे हो अभी जैसे कुछ खाए पिए मन लगी, आइसक्रीम हो गए गुपचुप हो गए, तो खा ले थो कि मना रही थे नहीं भाई गलल ठीक रखना है, इसी टाइप से तो नहीं रहा है कि मन के खा ले थो?
1: नहीं ऐसे मना तो नहीं करते, लेकिन ना बस आइसक्रीम ये सब मन ला ज्यादा तो खाना ही नहीं चाहिए, कभी कभी खाता हूँ मैं
0: ऐसे ना। तो चलो अच्छा ये बताओ कि अभी जैसे कोनो संगवारी है आप ला देख के चाहते है कि वह आप मन से ही कुछ कर सके सीख सके तो ओला का करना चाहिए?
1: अभी तो मैं खुद सीखा था तो ओला भी अपन साथ साथ में थोड़ा मतलब जेन मोला आते वो मैं ओला बताऊं और बाकी का तो हम दोनों मन साथ में ही प्रशिक्षण ले वो।
0: ऐसे ना। अच्छा ये बताओ आप ला सबसे अच्छा गाय में का अच्छा लगते है? अभी तो आप मन बहुत अकन लोकगीत हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, सब आने आने प्रकार के आप मन लोकगीत लगाते हो, तो आपके मन में कौन से ऐसे लोकगीत है जो आप लगा के अच्छा लगते हैं कि हाँ ये मोला मोर पसंद के है, चाहे भरथरी हो चाहे चंदनी पंडवानी सुआ पंथी जौन भी हो तेला आप मन सुनाते हो तो बहुत अच्छा लगती है, हमारे संगवारी मन भी खुश हो जाती।
1: जब मैं सबसे पहली स्टेज शो करे रहे हूँ रायपुर साहित्य उत्सव में, तब मैं एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाए रहे हूँ जैन मीर अली मीर जी के लिखे हुए हैं नंदा जही कारे, तो ओ मोला बहुत ही अच्छा लगा।
0: बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर गीत है, हमारे संगवारी मन घलो अगोरा करते हैं कि आप मनो लगाते हो तो हम सुन के झूम जाते हैं।

0: यह गीत बहुत अच्छा लगी सर अरुणिमा, सुन के बड़ा अच्छा लगा था, इसे लगे थे अरुणिमा के गीत ला सुनते रहन है ना। अच्छा हमार छत्तीसगढ़ ला ना रत्नगर्भा गई थे, यहाँ आने आने चीज है, बहुत सुंदर हमार छत्तीसगढ़ है। और हमार छत्तीसगढ़ ला हम रत्नगर्भा तो कहा था, संगे संग आप मन जैसे रतन भी भाई छत्तीसगढ़ में है, हमार संगवारी मन सुन के बड़ा वो हो था वहीं के हमू मन अरुणिमा जैसे बन सकन। और हमन तो भाई यही कहा था कि अरुणिमा वो आगु बढ़े अभी और प्रशिक्षण लेवे और खूब सुंदर सुंदर गीत गावे। और आप मन हमार संगवारी मन ले कुछ कहना चाहता था तो आप मन कहो।
1: अब मैं तो बस अतका कहे चाहूँ कि आप मन जेन सीखना चाहत हो ओला जरूर सीखूँ। और का बोलते हैं मोर तो पसंद है कि मैं हाँ आगे जाके गायक बनूँ, तो आप ला जेन अच्छा लगते आप वो कर सकत हो।
0: ऐसे ना जो अच्छा लगते हम लोग वही करना चाहिए ना, जिमा हमार शौक है या जिला करके हमला अच्छा लगते हम लोग वो करना चाहिए, संगे संग पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए है ना। अरुणिमा देखो स्कूल खुल गए है ना, और आप मन के हाथ में हम देखा था बड़ा सुंदर असन एक बैग है ना, और भाई बैग ले लेके स्कूल भी जाना है। और कई जन संगवारी है ना अभी का होते थोड़ा बहुत पढ़ते और ओकर बाद बीच में पढ़े बढ़ेरिया भी जाते स्कूल भी नहीं जाना चाहे है ना, कई बार ऐसे भी होते। कई संगवारी मन तो रोजिना स्कूल जाते और हर कक्षा में अगवाते, फिर कई बार कई संगवारी मन सोचते अब नहीं पढ़ान पढ़ाई बड़ा मुश्किल लगते होते ना ऐसे। तो ऐसे संगवारी मन ला प्रेरणा दे बर कोनो ऐसे गीत है का आप मन करा जेला सुन के बहु मन अपन बस्तल जोर के स्कूल आके तैयारी कर ले। ऐसे गीत
1: हाँ है ना,
0: तो चलो सुन ले जाए।
1: ठीक है सुना।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगी सर अरुणिमा। चलो अरुणिमा, हमार बालवाटिका के डहर ले आप ला बहुत अकन शुभकामना है कि आप मन खूब आगू बढ़ाओ और इसने गीत संगीत के संग जुड़ के प्रशिक्षण लेके बने ढंग ले सीख के ना छत्तीसगढ़ के नाव ला और आगू बढ़ाओ। तो चलत चलत एक ठन बढ़िया से गीत हो जाए।
1: हाँ।
0: कौन से गीत लगाऊं अभी?
1: तो मैं हाँ अभी ददरिया लगावत।
0: ददरिया, चलो स्वागत है भाई।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगीस अरुणिमा। आप मन ला देख के बड़ा अच्छा लगीस, आपकी प्रतिभा ला देख के बड़ा अच्छा लगीस। और सबले अच्छा बात ये है कि आप मन जतका सुंदर गाथा उतका सुंदर आपके विचार तको है। आप मन और आगु बढ़ाओ, हमार बालवाटिका परिवार की तरफ से आप लग गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना है, बधाई है। और भाई आप मन हमार कार्यक्रम में आयो, स्टूडियो में आके इतना सुघर ढंग ले गीत सुनायो, तेकर बर आप लग बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद तो मोला आप मन ला कहल चाहिए कि काबर आप मन मोला यहाँ आए के मौका ला दे हो, तो मैं हाँ आप मन ला धन्यवाद करत हूँ।
0: चलो हम आपके धन्यवाद ला स्वीकार करत, आपके उज्जवल भविष्य पर शुभकामना देवत हन पूरा बालवाटिका परिवार के डहाल ले, है ना। बाल कलाकार अरुणिमा शर्मा ले हमर यानी शीतला शुक्ला के गुड बात अभी आप मन सुनो। तबला मा संगतकार रहिन श्री प्रकाश निषाद मन, संपादन और प्रस्तुति रहीस वीरभान साहू मन की। ये सुघर फुलवारी आप मन ला कैसे लगीस तेला अपन चिट्ठी मा लिख के हमला पठोह भई, है ना। और हो सके तो अपन ईमेल घलो पठो सकत हो। हमार पता है लैका मन के चिट्ठी बालवाटिका द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर। और नान्य संगी हो हमार ईमेल आईडी है राय लैका मन के चिट्ठी 14@gmail.com। और नाने संगी हो कहूँ आप मन घलो ऐसन सुघर सुघर प्रस्तुति देना चाहत हो तो हमार सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी रायपुर में आ सकत हो। हर मंगलवार शाम 4 बजे ले 5:30 तक एक रिकॉर्डिंग करे जाते। नाने संगी हो पहली ना ये रिकॉर्डिंग हर मंगलवार बिहनिया 9:30 ले 11 बजे तक होत रही से। फिर अब भाई आप मन तो जानत हो स्कूल हा खुल गए हैं तो समय में थोड़ी परिवर्तन हो गए हैं, तो स्कूल ले आके बने खा पी के अपन दाई बाबू मन संग या फिर बड़े दीदी भैया मन संग आकाशवाणी रायपुर में अपन गीत कविता कहनी लेके आ सकत हो। फिर ध्यान रखू कि आप मन ला अकेला कब्भू नहीं आना है, जब भी आहू तो अपन बड़े मन संग आहू। और कहीं अभी आप मन नहीं आ सकत हो, बड़ दूरियम रही थो, तो अपन कविता कहनी ला हमार तिर चिट्ठी मा या फिर ईमेल में लिख के पठो देवो, हमन आपके नाव मा उला फुलवारी क्रम में शामिल करबो, है ना। और नाने संगी हो अब चलथन रोचक जानकारी दुनिया की डहर जिन्हा जुड़े है बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ले। नाने संगवारी हो उखर प्रसिद्ध कथन है कि मैं हाँ असफल नहीं होए हूँ, बस 10,000 ठीन ऐसा तरीका खोजे हों जिन्हा काम नहीं करी। और हमन का करथन, हाँ एक बेर कहूँ काम नहीं बनीस तो थक हार के बैठ जथन, है ना। भलोक थॉमस अल्वा एडिसन मन अपन दृढ़ संकल्प कड़ा मेहनत ले लगभग 1,000 ठन आविष्कार करें। 31 दिसंबर सन 1879 में एडिसन हा मेनलो पार्क न्यूजर्सी की अपन प्रयोगशाला में बल्ब के पहली सार्वजनिक प्रदर्शन करके दुनिया ला जगमगा दीस। उखर रिकॉर्ड 1,093 पेटेंट करे गए आविष्कार ले आज दुनिया हा आधुनिक जगत में कदम रखीस। एक रेसेती थॉमस एडिसन मनला सर्वकालिक महानतम आविष्कारक माने जाते। बिजली के बल्ब के संगे संग उमन फोनोग्राफ, सेफ्टी फ्यूज, ऑन ऑफ स्विच और मोशन पिक्चर के आविष्कार घलो करें। तनाने संगी हो आज के रोचक जानकारी यहीं तक। और बालवाटिका के समय घलो सिरात है, तो भाई जम्मो नाने संगवारी मनला शीतला दीदी के डहल ले विदा।
2: बच्चों जय।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल वाटिका। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रगति के सोपान। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नमो ड्रोन दीदी योजना विषय पर ड्रोन दीदी शांति विश्वकर्मा से प्रकाश उदय की बातचीत।

0: श्रोताओ नमस्कार, प्रगति के सोपान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि श्रोताओ आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत हम समय समय पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं और इस योजना से जुड़े हुए जो लाभार्थी हैं उनसे भी आपकी भेंट हम करवाते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज भी इस कार्यक्रम में हम ऐसा ही एक विषय ले रहे हैं जिसका विषय है नमो ड्रोन दीदी योजना, और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं शांति विश्वकर्मा जी, जो कि डोंगरगढ़ से यहाँ पधारी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में मैडम
1: जी। धन्यवाद
0: मैडम। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है और इस योजना का लाभ आप कब से ले रही हैं?
1: ये नमो ड्रोन दीदी जो योजना है सर, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की ही पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारी महिलाएं हैं, महिला समूह में जुड़ी हुई हैं SSG के थ्रू जो विहान योजना से है, तो उसी में ये सब महिलाएं लाभ उठा रही हैं जी।
0: जैसे कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत हैं आप
1: जी,
0: तो जो पूरा जिला है जो भी ऐसा ड्रोन का काम है वो आप ही देखती हैं
1: जी? सर, जहां से फोन आता है तो मुझे वहां जाना पड़ता है, और ये मेरे को हो गया मतलब 2023 में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे
0: जी। ड्रोन चलाने की जो ट्रेनिंग है वो आपको कब और कहां से प्राप्त हुई?
1: हम लोग को ट्रेनिंग ग्वालियर से दी गई है, 15 दिवसीय था हम लोग का जो प्रशिक्षण है वो ग्वालियर से हुआ है हमारा।
0: अच्छा, कब हुआ ये
1: ट्रेनिंग? 2023 में।
0: अच्छा जी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है?
1: इस योजना का उद्देश्य है किसानों की मदद करना, और मेन उद्देश्य तो ये है कि जो मेहनत किसान भाई लोग करते थे, जो डब्बा टांग के खेतों में काम कर रहे थे दिन दिन भर, एक एकड़ में उनको दिन भर लग जाता था, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब महिलाओं की भी मदद की है एक तरफ से, और किसान भाइयों की भी मदद हुई है
0: जी। और पहले तो उसके दुष्प्रभाव भी थे, जो किसान भाई खुद छिड़काव करते थे, समय भी ज्यादा लगता था
1: जी,
0: वो नहीं कर पाते
1: खेतों में घुसना है, उसमें कीड़े मकोड़ों का भी डर था, और समय भी एक एकड़ में उनको दिन भर लग जाता था, और यही ड्रोन से 10 मिनट लगता है अभी जी। और पानी जहां उनको 100 लीटर लगता था एक एकड़ में, आज 10 लीटर में काम हो रहा है सर।
0: तो ये जो ड्रोन वगैरह है ये सब सरकार ने मुहैया करवाया आपको?
1: जी जी, ये पूरी प्रधानमंत्री योजना के तहत ही है, नमो ड्रोन दीदी लखपति दीदी योजना के तहत।
0: अच्छा अच्छा
1: जी जी।
0: तो इस योजना के लिए सरकार द्वारा कितनी सब्सिडी आपको प्रदान की जाती है?
1: इसमें हम लोग को पूरा फ्री है सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: निशुल्क है,
1: कुछ
0: भी आपको नहीं देना उसके बाद?
1: नहीं, निशुल्क है
0: जी। हाँ, अभी इस योजना के अंतर्गत आपको कितनी आमदनी हो जाती है?
1: इसमें तो सर हम लोग को आमदनी बहुत है, जैसे सीजन अभी आएगा हमारा, बारिश में सीजन आएगा तो हम लोग दिन में 3,000-4,000 एक दिन में कमा लेते हैं सर, बाकी समय में हम लोग का भी वही महीने का 20,000-22,000 रूपए तो मिनिमम कमा ही लेते हैं जी।
0: तो इसका रख रखाव कैसे करती हैं आप ड्रोन?
1: हम लोग रख रखाव करते हैं सर, उसकी साफ सफाई है, देख रेख करना है, जब भी आते हैं खेत से तो हम लोग उसको फिर मेंटेनेंस करने का काम हमारा ही रहता है डेली का जी।
0: तो प्रति एकड़ आप कितना लेती हैं किसान से?
1: अभी
0: तो
1: छिड़काव
0: करना होता है आपको खाद का?
1: खाद का छिड़काव के लिए हम लोग 300 रूपये ही ले रहे हैं सर प्रति एकड़।
0: अच्छा
1: जी। और जो बड़े क्रॉप्ट है उसका 500 रूपये है, जैसे गन्ना है, केला है, पपीता है, राहर है, उसका 500 रूपये रेट है, और धान का तो सरकारी रेट है 300 रूपये जी, तो हम लोग 300 ही लेते हैं
0: जी, जी जी। कौन सा मौसम ज्यादा आपके लिए मतलब अच्छा रहता है, मुफीद रहता है?
1: हम लोग तो अभी मतलब जो कमाई का सीजन रहता है ये बारिश का ही समय,
0: बारिश का, क्योंकि हमारा धान का कटोरा
1: जी,
0: है
1: जी, तो धान का कटोरा है तो उसी में ही कमाई रहती है।
0: धान की खेती ज्यादा होती है हमारे छत्तीसगढ़ में।
1: हाँ सर,
0: इस योजना के लिए क्या कोई स्व सहायता समूह भी आपने बनाया है?
1: जी जी, इस योजना के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही फायदा उठा सकती हैं।
0: अच्छा,
1: ये योजना।
0: तो कितने लोग जुड़े हुए हैं आप इसमें?
1: हम लोग 12 लोग हैं सर समूह में, और मिनिमम 12 लोग रहते ही हैं महिला समूह में जी।
0: सीजन जैसा आपने बताया कि एक ही होता है, बारिश का होता है, तब काम ज्यादा होता है
1: जी।
0: तो कितने ड्रोन आपने रखे हैं?
1: ड्रोन तो सर एक ही है।
0: अच्छा।
1: जो मुझे मिला है लखपति दीदी योजना के तहत, माननीय प्रधानमंत्री की योजना से, और जिले में अभी ड्रोन दीदी मैं ही हूँ हमारे राजनांदगांव जिले में, और 2 भाइयों को भी मिला गया है ड्रोन।
0: अच्छा।
1: तो वो भी हैं अपने क्षेत्र में, वो भी काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो जैसे उनके क्षेत्र का फोन आता है तो फिर मैं उनको फोन करती हूँ, या उनके क्षेत्र का मुझे आता है वो मुझे फोन करते हैं, मतलब हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं सब जी।
0: ये बहुत अच्छी बात है
1: जी जी।
0: और जो आपके साथ जुड़ी हुई समूह में और महिलाएं
1: जी,
0: उनसे क्या काम लेती हैं आप?
1: वो तो अपने अपने कामों में है सब सर, कोई किसी रेडीट्यूट का काम मिला है, कोई मध्यान्ह भोजन बनाने जा रही है, कोई अचार पापड़ बनाती है, ऐसे सभी को अलग अलग काम मिल चुका है समूह के ही माध्यम से।
0: अच्छा अच्छा
1: जी जी,
0: मतलब सभी तो
1: सब अपने अपने काम में हाँ व्यस्त रहते हैं।
0: स्वावलंबन के लिए बहुत अच्छी बात
1: जी,
0: है
1: जी,
0: महिलाओं के
1: जी।
0: तो ये जो स्वावलंबन की भी एक योजना है, ये एक तरह से कह सकते हैं हम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप?
1: स्वावलंबन की जो योजना है सर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बहुत सारा अभी रोजगार जो दिए हैं हमारी भारत देश की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, बस उसमें लाभ उठाना महिलाओं का काम है। छोटे छोटे काम घर में भी कर सकती हैं, दोना पत्तल बनाना है, बत्ती बनाना है, अगरबत्ती बनाना है, अचार पापड़ बनाना है। जैसे मैं खुद इसके पहले अचार पापड़ का ही काम करती थी।
0: अच्छा।
1: महिला समूह से जुड़ करके
0: जी, जी, जी।
1: इसके तहत फिर मेरा नाम इसमें सेलेक्ट हुआ तो मैं ड्रोन दीदी बन गई जी।
0: तो ये जानकारी कैसे मिली आपको कि ऐसा ड्रोन दीदी का कुछ ऐसा प्रशिक्षण होगा या उसमें चयन होगा?
1: जी, ये हम लोग को जनपद से ही आया था सर, इफ्को, हाँ इफ्को की तरफ से है ये।
0: अच्छा।
1: और जो ड्रोन भी मिला हम लोग को इफ्को द्वारा ही मिला है। इफ्को कंपनी से ही।
0: एक ड्रोन की क्या कीमत होगी वैसे अनुमानित?
1: एक ड्रोन की कीमत जो आयोटेक की कीमत है वो 10 लाख की है।
0: अच्छा
1: जी। तो और गाड़ी भी मिला हम लोगों को, ईवी, आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है।
0: अच्छा।
1: तो पूरा टोटल मिला के वो 15 लाख का हम लोगों को प्रोजेक्ट पूरा दिया गया है।
0: तो जैसे भी काम बढ़ रहा है तो कभी ऐसा लगता है कि ड्रोन और हो हमारे पास तो हम और अच्छे से काम कर सकते
1: लगता है ना सर, जब ऑर्डर इतना आता है कि मैं कर नहीं पाती हूँ तो ऐसा लगता है कि एक ड्रोन और मुझे लेना चाहिए ताकि मैं सभी किसानों की मदद कर सकूं। बहुत सारे किसान छूट जाते हैं मुझसे। अब एक दिन में एक आदमी, एक व्यक्ति, और बारिश का समय रहता है, कीचड़ है, कभी गाड़ी नहीं जा पाती है, तो एक दिन में कभी 25 एकड़ भी हो जाता है और बाकी किसान छूट जाते हैं पूरे सीजन में, तो मुझे अंदर से दुख होता है कि नहीं, सारे किसानों को मुझे करना था लेकिन नहीं कर पाती हूँ ना सर।
0: क्या प्रयास कर रही हैं इसके लिए?
1: तो मैं प्रयास कर रही हूँ सर कि मैं एक ड्रोन फाइनेंस करवाऊंगी खुद से।
0: अच्छा, अच्छा।
1: क्योंकि अब हम लखपति दीदी तो हम बन चुके हैं लेकिन अपनी मेहनत से अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: प्रधानमंत्री जी तो हमको लखपति दीदी बना दिए हैं लेकिन हम अब करोड़पति भी बनना चाह रहे हैं। ये संदेश है महिलाओं को भी।
0: जी जी जी। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने इस प्रयास में सफल हों और जो लाभ आप पहुंचाना चाहती हैं किसानों को वो भरपूर ढंग से आप पहुंचा सकें।
1: जी, जी।
0: अच्छा, किसानों से सीधा संपर्क आपका होता है जब आप ये काम कर रही हैं ड्रोन दीदी का, तो जो किसानों की समस्याएं हैं वो भी साझा करते होंगे आपसे, तो कीटनाशकों का प्रबंधन भी करना होता है खाद के अलावा?
1: जैसे देख के, पत्तों को देख के, पौधों को देख के कभी मैं भी उनको सलाह देती हूँ। कई किसानों को जानकारियां नहीं रहती हैं और ज्यादातर किसान तो आजकल बहुत समझदार भी हो गए हमारे किसान भाई, उन्हीं लोग बोलते हैं दीदी इसमें कौन सी दवाई डालना है, तो जो मेरे पास रहती कभी कभी मैं भी उनको सलाह देती हूँ कि भैया आप ये दवाई डालिए इससे कीड़े जल्दी मरते हैं। ऐसा बहुत सारे, जैसे अब जैविक यूज करना रहता है इफ्को का, नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी, तो हम सभी किसानों को यही सलाह देते हैं कि आप इसको ज्यादा यूज करिए
0: ताकि भरपूर फसल भी ले
1: सके। हाँ, भरपूर फसल,
0: नुकसान भी।
1: और फिर हमें अपनी जमीन को बचाना भी है, जो दानेदार डाल डाल के आज जमीन हमारी कितनी कठोर हो चुकी है, फसल कम हो रही है, इसलिए हम उनको सबसे ज्यादा यही सलाह देते हैं। और अभी हम लोग हर गांव में शिविर लग रहा है तो मैं जाती भी वहां, किसानों को समझाती भी हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करें।
0: जी, जैसा आपने बताया कि शिविर भी आयोजित किए जाते हैं समय समय पर
1: जी,
0: तो वहां पर किस तरह की समझाइश दी जाती है किसानों को?
1: किसानों को यही समझाया जा रहा है अभी कि धान की फसल थोड़ा कम करिए, मक्का बोइए, सरसों बोइए, और भी दूसरी फसल, अन्य जो फसल है उससे जो हमारी जमीन है वो उपजाऊ होती है। जैसे हम सरसों बोते हैं तो उसकी जड़ जो जमीन के अंदर तक जाती है, उसको पोला करती है जमीन को नीचे से, तो उससे हमारा जो मिट्टी है उर्वरक बनता है। तो अभी हम लोग जो गांव में शिविर लगा रहे हैं तो किसानों को यही समझाया जा रहा है कि आप मक्का बोइए ज्यादा से ज्यादा और सरसों लगाइए और धान की फसल थोड़ा कम करिए, क्योंकि धान में खाद भी ज्यादा लग रहा है और पानी भी ज्यादा लग रहा है, और पानी भी तो हमें बचाना है आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसा है,
0: परिवर्तित फसलों को तो शासन
1: परिवर्तन लाना है छत्तीसगढ़ में,
0: ताकि जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे,
1: बनी रहे।
0: हाँ, ये बहुत अच्छी बात है और इस तरह की समझाइश आप दे रहे हैं अपने।
1: जी जी। तो अभी हमारे जो जिले से है कृषि विभाग, वो भी मेरी बहुत मदद करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उन्हीं के द्वारा मैं भी गांव गांव में जा रही हूँ शिविर में, उन्होंने मुझे दिए हैं दीदी आप ये गांव जाइए वो गांव जाइए, तो डेली लिस्ट भेजते हैं।
0: जी जी।
1: तो अभी 30 तारीख तक पूरा शिविर लग रहा है पूरे जिले में हमारे।
0: तो नमो ड्रोन दीदी बनकर जो आपको ये अच्छा काम मिला है और स्वावलंबी भी आप बनी है
1: जी,
0: तो कैसा महसूस करती है अपने जीवन में आप, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में?
1: अब ड्रोन दीदी बनने से तो बहुत सारा परिवर्तन आया है, अभी तक तो मैं गृहस्थ जीवन में ही बिजी थी, अचार पापड़ तक ही सीमित थी कि बस अचार बनाना है, सप्लाई करना है। लेकिन जब बाहर निकली तो बाहर की दुनिया देखी, और ड्रोन दीदी बनी हूँ तब से। तो सर अभी तक मुझे छत्तीसगढ़ में दिल्ली तक सम्मानित किया गया है, वहाँ भी मुझे लोकमाता अहिल्याबाई का अवार्ड दिया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, क्योंकि अपने हमारे जिले में भी मेरा काम अच्छा था और मैं बहुत सारे किसानों तक पहुंच पाई हूं, उनको समझा पाई हूं और मैं अच्छे से उनकी मदद कर सक रही हूं इसलिए।
0: और भविष्य में भी आप चाहती हैं कि और बढ़ाएं ड्रोन कुछ, तो
1: जी जी,
0: ताकि मुनाफा भी ज्यादा हो। हाँ। और जो आपकी सेवा है वो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंच सके।
1: जी, तो मेरा भी यही सोच है कि एक ड्रोन और लूं, जो किसान भाई मेरे छूट जाते हैं तो मैं उन तक भी पहुंच पाऊं, ताकि मैं अपने बच्चों को भी सिखा सकूं ड्रोन, ताकि एक जगह मैं अगर कर रही हूं तो मेरा बेटा दूसरी जगह करे।
0: बिल्कुल,
1: ये है मेरा आगे का सोच। जी,
0: इस योजना से महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं?
1: ड्रोन से तो अभी महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन चुकी हैं और लखपति दीदी बन चुकी हैं अभी सभी महिलाओं को। अब मतलब पूरे भारत में ही ड्रोन दिया गया है जहां जहां महिलाओं को, तो सब आत्मनिर्भर बन के और अच्छी आमदनी कमा रही हैं और किसानों की भी मदद कर रही हैं और उस आमदनी से अपने परिवार की भी मदद हो रही है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, इस योजना के लिए पात्रता और शर्तें क्या है?
1: इस योजना की वही है कि इसमें एक महिला समूह से हमें जुड़ना जरूरी है और फिर प्लस 12वीं पास होना जरूरी है।
0: अपने स्वावलंबन के लिए कुछ और यदि दीदियां इससे जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप?
1: हम लोग तो लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि और भी महिलाएं ट्रेनिंग लें, तो उसके लिए हम लोग अभी जब मुख्यमंत्री जी से हम लोग की 3 तारीख को वार्तालाप भी हुई है दूरदर्शन केंद्र में, तो हमने उनसे भी बोला है कि सर और भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए। तो सर ने बोला है अभी रायपुर में भी ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है, तो हम चाह रहे हैं कि और भी महिलाएं ट्रेनिंग लें।
0: तो बहुत अच्छी बात होगी जी, क्योंकि रायपुर में अगर प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा तो बहुत सारे लोग जो यहीं के आसपास के हैं अच्छे ढंग से यहाँ प्रशिक्षण।
1: 3 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी से हम लोग की चर्चा हुई है ड्रोन दीदियों की।
0: अच्छा, चलिए शांति जी, बहुत सारी आज आपसे बातें हुई और आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से आप काम कर रही हैं, भविष्य की आपकी योजनाएं क्या हैं और इसे लेकर आप और कितनी संभावनाएं देखती हैं अपने क्षेत्र में। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद सर।

नमो ड्रोन दीदी योजना इस विषय पर अभी आप ड्रोन दीदी शांति विश्वकर्मा से प्रकाश उदय की बातचीत सुन रहे थे। कार्यक्रम था प्रगति के सोपान। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस संदेश से पहले आपने सुना हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत मदन मोहन का था।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

0: राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत अभी आपने सुना, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में। स्वर मोहम्मद रफी का था और फिल्म का नाम था मेरा साया।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।
4: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
5: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
6: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
4: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादें।
4: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है,
8: मुझे भी कुछ कहना है।
4: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

वो कौन थी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, संगीत मदन मोहन का था। चित्रपट संगीत कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं कैफी आजमी की रचना, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में। आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की है और फिल्म का नाम है हीर रांझा।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म हीर रांझा के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं फिरित पटेल और उनके साथी। पहले सुनिए फिरित पटेल और साथियों के स्वर में अशोक देवांगन की रचना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं फिरित पटेल और इनके साथी। इनके स्वर में आइए अब सुनते हैं पारंपरिक डंडा गीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे फिरित पटेल और उनके साथी। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले 1-2 दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर, एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा जांची जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा हमारी सरकार सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर विकास और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देशभर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई ने आपातकाल के विरोध में मौन जुलूस निकाला। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। राजनांदगांव में राज्य कर विभाग ने फर्जी बिलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को

गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 76 करोड़ रुपए के कागजी लेन देन और 8 करोड़ 22 लाख रुपए के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया है। विभाग के अनुसार फर्म ने बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिलों के माध्यम से कर लाभ लेने का प्रयास किया। मामले में अन्य लोगों और फर्मों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की ब्रह्मकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीत, गजल और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वरधारा। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं कैलाश खेर और इला अरुण। पहले सुनिए कैलाश खेर के स्वर में ये गीत।

कैलाश खेर के स्वर में अभी आपने ये गीत सुना। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वरधारा। आज इसमें कलाकार हैं कैलाश खेर और इला अरुण। लीजिए अब सुनिए इला अरुण के स्वर में उनका स्वरचित गीत।

गैर फिल्मी गीत गज़ल और कव्वालियों का कार्यक्रम स्वरधारा अभी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे कैलाश खेर और इला अरुण। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

0: आराधना फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए, प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया, मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया, डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के स्वर में अनजान की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते।

लीजिए अब सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार के स्वर में। राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

दरिया दिल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना नितिन मुकेश के स्वर में। विट्ठल भाई पटेल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गोलमाल का गीत। गुलजार के बोल हैं, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म गोलमाल का गीत। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आवर्जन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी तीनों मैच जीत लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें।

ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रवीणा त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने कार्यक्रम में। चलिए करते हैं शुरुआत पहले गीत के लिए। हमें जिन्होंने फरमाइशें भेजी हैं उन श्रोताओं के नाम लेते हैं। ग्राम भदरसी से घनाराम सेन, गीतेश, दीपेश, निर्मला सेन, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, बिलाईगढ़ से जगदीश देवांगन, पुष्पांजलि, जया, जानवी, तृप्तेश देवांगन, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी इंद्राणी, माया, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका साहू, धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, रानू, खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैशी, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, पुष्पलता, अर्पिता, अभिनव, बलदाऊ, राजेश्वरी, आस्था, प्राची, प्रियल, अनुराग, अभिषेक, डुग्गू और कान्हा यादव, सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू, आमा खोडरा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह, दक्षप्रिया, गीत, सरगम नेताम, सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहितराम, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद, सतीबाई और चीकू साहू और बनबघेरा राजनाथगांव से योगेश सारवा और आशा सारवा। आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर नीरज श्रीधर और कविता सेठ के स्वर में इरशाद कामिल की रचना। संगीत प्रीतम का है और फिल्म का नाम है कॉकटेल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता साथियों ने। पलारी से प्रकाश वर्मा, अन्नपूर्णा, निखिल, यशस्वी वर्मा, मेघापारा से रामकुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल, शांतिनगर भाटापारा से पुनियाबाई और नारायण यदु, शहीद नगर खमतराई रायपुर से हीरा साहू, घटारानी फुलझर से योगेश्वर साहू, डुमेश्वरी यामिनी मुस्कान, हर्षिता साहू, भीमखोज तरपोंगी से संतोष गुप्ता, हितेश, होमेश, लक्ष्मी, प्रतिभा गुप्ता, हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र, पायल साहू, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, पुनेश्वर रजक, राम कुमार सेन, विक्की सेन, फानेश्वर रजक और उमेश रजक, गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष और कपिल साहू, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर नामदेव, खैरागढ़ राजलालपुर से मोतीलाल भीमटे, सुशीला, मेघा, नेहा, येशु भीमटे, आवरा डबरी से श्यामलाल साहू, मोंगरा, संगीता, केशरी साहू, रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन, गौरव, घनश्याम साहू और हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस दास, शांति, ऋचा और गायत्री वैष्णव। तो आप सबको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत। संगीत जतिन ललित का है, आवाजें शान और कैलाश खेर की और फिल्म का नाम है फना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, अपना पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने। कार्यक्रम की अगली फरमाइश के लिए हमें ईमेल मिले आप सभी के। पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, मेचका सोंढूर से भूपेंद्र नाग, पूर्णिमा, लिखिल, तरुणदीप नाग, जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा और विपुल कांबड़े, लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, श्रीमती संतोषी, निशांत ध्रुव, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रज्जन रजक, लालू, सोना मोना, हनी और यश, चिरमिरी कुरासिया, कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर, नारायणपुर से श्रीमती दिनेश्वरी बंजारे, मनीष कुमार बंजारे, कोरासी भैंसा, रायपुर से पवन कुमार साहू, क्रांति देवी, पंकज, सुष्मिता, दीपिका साहू, पीपर लोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा, पुष्पांजलि वर्मा, धमनी राजिम से दुष्यंत कुमार, आशीष कुमार बंजारे, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, और हसदा नंबर 2 से श्रीमती पार्वती साहू, टिकेश्वरी और नागेश्वरी साहू। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण की रचना, संगीत सी रामचंद्र का है और फिल्म का नाम है आजाद।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुने, कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला गीत जिसे पसंद किया है आप सबने ईमेल भेजकर। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डोंडी लोहारा से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी, मास्टर अलकबीर, किकर मेटा बेलहारी, पाटन से संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, भानबेड़ा मुंगवाल से भरत राम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग, मोक्ष पडोटी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, पहारा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्र किरण बंछोर, कांकेर संबलपुर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू गुड्डू, भोईना पार लाटाबोर से देवनारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी और उमाबाई साहू और खमार मोड़ा से शिवाय गिरी और एकांशी गोस्वामी, सतीश गिरी और श्रेयांश गिरी गोस्वामी। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर बिंदिया फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। इकबाल कुरैशी के गीत और संगीत भी इन्हीं का है।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनी फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रवीणा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अगले गीत के लिए आपके भेजे गए ईमेल पढ़ते हैं। नादिया गंडई से मूलचंद पटेल, आशीष पटेल, मोनिका पटेल और सीमा पटेल, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे, रवेली फिंगेश्वर से रामावतार यादव, शुभम सौरभ चंचल यादव, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश, नेहा वान्या सिंगरौल, हटौत बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर राजकुमारी पटेल, खल्लारी भीमखोद से जीएल साहू, सरोज छोटी पिंकी साहू, नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, लोरमी तिलकपुर से चंद्र कुमार मरावी, चंद्रेश कुमार, मालती मयंक मरावी, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, बागामुड़ा कोमाखान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन, यशस्वी देवांगन और लोहारी डीह कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर आशा भोसले और मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में फिल्म धर्मा का गीत। रचना वर्मा मलिक की है, संगीत सोनिक ओमी का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, SH बिहारी के बोल और ओपी नैयर का संगीत है और इस गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी, शुभम, सौरभ रावत, नीरज रावत, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, भलेसर महासमुंद से बलराम सेन, इंदु सेन, छगन सिन्हा, द्वारिका सिन्हा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम साहू, योगेश्वर, हेमलता, टिकेश्वरी साहू, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, बठेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए फरमाइश आप सभी की है बाजार वार्ड महासमुंद से भीष्मदास, नर्मदा, हिरमनी, दीपक और लक्ष्यदास, इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, नेहा, जगदीश देवांगन, भड़गा कोदवा गुड़ान से श्याम सिंह मरावी, राजकुमारी रानी, रजनी, राहुल, पूजा मरावी, कुईग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे, जामुनबाई, फिरतराम, मालती धुर्वे, पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम, कृष्णा देवांगन, पहंदा से तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई देवांगन, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, महेश, संध्या कुकरेजा, रानीगांव नगरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल साहू, अमलीडीह साजा से खिलेश्वर सिंह चौहान और मालती देवी चौहान। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में गुलजार की रचना। संगीत राजेश रोशन का है और फिल्म का नाम है स्वयंवर।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आप सबको सुनवाते हैं फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं से, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और खयाम का संगीत है। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ठेठवार पारा कनेरी से सनत कुमार यादव, परसाटोला अम्बागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारणी खुमेंद्र मसिया, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सौंगा मगर लोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, गजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, देविका रानी, हियांश कुमार चंदन, सहा मालगी से सुखनंदन चंद्रवंशी, शिवरानी, आकाश, प्रतिभा पूर्वी, पूनम चंद्रवंशी, बोगाटोला मोहला मानपुर से कुमारी इंदु, चांदनी, तारामती, मुनिंद्र कुमार, मालिकराम और सविता देवी सिन्हा, पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल, दमधा सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल, बुरसुदा से भगवानी सेन, संतोषी सेन, गजेंद्र सेन, चिराग सेन, सरसेनी से तेजराम सेन, जानकी सेन, दुष्यंत कुमार, जागृति सेन, हरमो भोरम देव से जीवनलाल साहू, राजबाई, लोकनाथ, वेदिका साहू, बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, बाबू, प्रियांश, चरोदा नवापारा से नंदकुमार, प्रमिला, खुशबू, ज्योति ठाकुर, तेंदुभाटा मगरलोड से उमेंद कुमार निषाद, महेश्वरी, देविका, पोषण, नूतन, भूपेश, दिव्यांश और शिवा निषाद, और चरोदा से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन, जीशान अहमद और शाह नवाज अहमद सिद्दीकी।

तो श्रोताओं, ये था आज का ईमेल भेजें फिल्म संगीत सुने कार्यक्रम। अब दीजिए अनुमति अपनी दोस्त प्रवीणा त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: ईमेल भेजें, फिल्म संगीत सुनें। अभी आप श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये फरमाइशी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा की जांच की जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को मॉपअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 28 जून को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों, विकासखंडों और सहकारी समितियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता सप्ताह के दौरान जागरूकता, जनभागीदारी और नवाचार पर विशेष फोकस रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण कार्य के तहत रिलीविंग गर्डर डीलॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 25 जून से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की बरमकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गबन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। करीब 30 करोड़ 51 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। मामले में 500 किसानों की शिकायतें आधार बनी है। जांच के दायरे में शंकरगढ़, कुसमी और रामानुजगंज की सहकारी बैंक शाखाएं शामिल हैं। ईडी वित्तीय लेनदेन और ऋण वितरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY के तहत आज रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडर ब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। राजधानी रायपुर के सेजबार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में आज दोपहर 3 बजे तक संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रायपुर है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12 बजे ही प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधेका के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधेका जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधेका।
2: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
3: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
2: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
3: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
4: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
3: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
4: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
3: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
4: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
0: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
4: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
3: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओ, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
4: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
4: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
4: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
4: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
4: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
4: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
4: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
4: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
4: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
4: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
4: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
4: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
4: अच्छा
7: जी।
4: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
3: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
4: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
3: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
4: गिजू भाई के अनुसार
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
4: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
3: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक सुधा। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं गोंडी गीत। कलाकार हैं मेहर सिंह और साथी।

దయో రేరు తంత నంజరకే మడ్రాలయో.

मेहर सिंह और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रही थी गोंडी गीत। इन्हीं के स्वर में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

आदिवासी जनजातीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए हल्बी गीत। कलाकार हैं दिलीप सिंह और साथी।

0: लोक सुधा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है, आइए समाचार सुने।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने

0: कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। चित्रपट संगीत।

खुददार फिल्म का ये गीत था कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। राहत इंदौरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत बलमा फिल्म से। आवाजें एक बार फिर कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का।

मैंने प्यार किया। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में। गीत असद भोपाली का था, संगीत था राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाजों में। संगीत शिवहरी का है, फिल्म है चांदनी।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कार्यक्रम विवरण।

आइए अब आपको जानकारी दे दी हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाली क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री सुनिएगा आज शाम 6:30 से 6:45, शाम 7:00 से 7:30 तक, रात 8:00 से 8:45 और रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम होगा शाम 4:00। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद 1:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम बिंदिया में आज की बात होगी, नशा नाश का मूल है और योग रखे निरोग। साथ ही क्रम कथा चक्र में सुनेंगे कहानी चुभन। कहानीकार होंगी डॉक्टर आभा मिश्रा। साथ ही सुनेंगे शीर्षक गीत और जरूरी टिप्स।

संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:10 पर। इसमें अपन गोट के अलावा होंगे क्रम हेलो मितान और अंतस के आरोप।

शाम 7:30 पर किसानवाड़ी में आज की सलाह का विषय होगा वर्षा के पहली पशु के आवास चारा के प्रबंधन रोग राई और टीकाकरण। जानकारी देंगे डॉक्टर भूपेंद्र सिन्हा विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी कुरुद।

कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया।

बिंदिया की श्रोता बहनों को पारमिता का प्यार भरा नमस्कार। मौसम का मिजाज कुछ नरम हुआ है और हम सभी को अब थोड़ी राहत भी महसूस हो रही है। बादलों की अटखेलियां अब हमें लुभा भी रही हैं। ऐसे में मन क्या कहता है जरूर सुनिए बहनों। आज बिंदिया में कुछ जरूरी टिप्स आपसे साझा करेंगे और सुनाएंगे एक दिलचस्प कहानी, मगर पहले बात कर लेते हैं नशे के लत की। बहनों ये तो आप भी मानती हैं कि जीवन अनमोल है और इसे संजो के रखना हमारा कर्तव्य है। ईश्वर की इस सुंदर दिन को कई बार नशे की बुरी आदत के कारण भुगतना पड़ता है। उस व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार इस लत के कारण भुगतता है। समय रहते अगर इंसान ना संभले तो उसका भयानक अंत निश्चित है। कई बार हम उस व्यक्ति को अपनी बातों से समझाना चाहते हैं कि नशे की आदत वो ना बने। दुविधा इस बात की है कि नशे का सेवन करने वाला व्यक्ति इस तथ्य को समझता भी है, लेकिन कई बार वो इस कदर नशे का आदि हो जाता है कि चाहकर भी इससे बाहर निकल नहीं पाता और हर रोज थोड़ा और इस नशे की दलदल में फंसता चला जाता है। नशा केवल हानि ही पहुंचाता है। कुछ पल के लिए जरूर एक अलग एहसास देता है, मगर धीरे धीरे दीमक की भांति वो शरीर को नष्ट करता चला जाता है। नशे में इंसान ठीक से सोचने समझने की शक्ति खो देता है। एक इंसान में वैशी बन जाता है और जुर्म को अंजाम देने में भी उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पाप पुण्य के फर्क को ही वो इंसान समझ नहीं पाता। कई बार इस नशे के चलते हंसता खेलता घर उजड़ जाता है। बहनों नशे के आदि को फिर से सामान्य जीवन में लौटाया जा सकता है। आज कई माध्यम है जिससे नशा मुक्त हुआ जा सकता है, बस थोड़ी समझदारी और धीरज से काम लेना होगा। आज कई सरकारी और गैर सरकारी नशा मुक्त संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं, बस आपको उस संस्थान से संपर्क करना पड़ेगा। काउंसलिंग, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और डॉक्टरी निरीक्षण के अधीन रहकर कोई भी नशा मुक्त हो सकता है। नशा मुक्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है उसकी तलब को तोड़ा जाए। आज बाजार में कई दवाइयां निकोटीन के तलब से उभरने के लिए उपलब्ध हैं। डॉक्टरी सलाह से ही इसका सेवन उचित है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने मन को काबू में रखना। उसके लिए किसी क्रिएटिव फील्ड में खुद को बिजी कर लेना सबसे ही उत्तम विचार है। जैसे कि संगीत, गायकी, नृत्य, सिलाई, लेखन, सेवा भाव से भी नशे की लत से निकलने में मददगार साबित होता है। बहनों योग सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है निरोग रहने के लिए। हमारे देश की ये विद्या आज देश विदेश में अपनाई जा चुकी है। क्यों ना हम भी अपने जीवन में योग को नमक की भांति घोल लें। बस दिन का आधा घंटा अगर योग करते हैं तो अपने शरीर को कई बीमारियों से निजात रख सकते हैं। घर पर बैठकर ही कई योग आसन हम कर सकते हैं, तो फिर आज से ही योग अपनाएं और निरोग रहें। तो बहनों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर और सुनते हैं शीर्षक गीत, जिसमें आज हम आपसे पानी से संबंधित कुछ गीत सुनाएंगे। जब पानी ही ना हो फिर जीवन कैसा। आज पानी का संकट हमें रुला रहा है। समय रहते यदि हमने इसके समाधान के विषय में नहीं सोचा तो जीवन इससे भी कठिन हो सकता है। इसी तर्ज पर आइए सुनते हैं फिल्म गाइड का गीत, स्वर किशोर कुमार और साथियों का, गीतकार है गुलजार और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: बहनों, कोरोना काल में लोगों का जीवन एकदम उलट पुलट हो गया था। जहां एक तरफ लोग खुद को सुरक्षित लगने में व्यस्त थे, वहीं कुछ लोगों के मन में सेवा भावना सर्वोपरि थी। इसी तर्ज पर आइए सुनते हैं हमारे अगले क्रम कथा चक्र में ये दिल को छू लेने वाली कहानी चुभन। कहानीकार हैं डॉक्टर आभा मिश्रा।
1: मेरी चचेरी बुआ ने मुझे फोन पर कहा, ऐसी भी क्या व्यस्तता है कि तुम अपने घर भी ना आ सके सोमेश? कम से कम घर पर जो शोक में आए थे उन्हें अपना चेहरा तो दिखा जाते। मैंने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया और फोन कट गया। ऐसी बात नहीं है कि मैंने पापा की देखभाल में कोई कमी की थी। मैंने पापा के लिए घर में 5-5 सेवक रखे थे। एक तो दिन भर पापा के साथ रहता था, समय पर भोजन कराना, दवाई देना, उनके कपड़े प्रेस करना, बेडशीट बदलने से लेकर घर के पर्दे, सोफा कवर आदि बदलने की जवाबदारी दया की थी। वह पापा के हर जरूरत का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। बदले में मैं उसे मुहमांगी तनख्वाह हर महीने दे दिया करता था। रहना खाना आदि तो पापा के साथ साथ हो ही जाता था। भीमा हर दिन आकर कपड़े धो जाता था। हीरा घर की साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। उसने भी पापा का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं की। मालती आकर पापा के स्वाद अनुसार भोजन बना जाती थी, फिर दया उन्हें खिलाता था। एक माली चंपक हफ्ते में आकर घर की बागवानी कर जाता था। मम्मी कोरोना काल में चल बसी थी, तब हम इंडिया नहीं आ पाए थे। म्यूनिसिपल के हेल्प से मम्मी का अंतिम संस्कार पापा ने करवाया था। हाँ, यह जरूर था कि पापा तब से कभी खुश नहीं रहते थे। कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। 84 वर्षों में पापा का परसों सुबह देवलोक गमन हो गया था। आज उनका अंतिम संस्कार था। सुबह 9 बजे मैं विमानतल पर उतरा। टैक्सी

में वह भी तो लगते हैं। पंडित जी, पंडित जी का क्या काम है वहाँ? तुम अपने कुछ परिचित बुला लो, चंपक भीमा से भी कहना कि आ जाए। तुम सब मिलकर स्वर्ग रक्त से चिता पर रख देना, मैं अग्नि संस्कार कर दूंगा। पापा के कुछ परिचित और रिश्तेदार भी तो आएंगे ही, वे सब भी समय समय पर तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं साहब जी, अंतिम संस्कार ऐसा नहीं होता। पंडित जी आते हैं, कुछ विधि संस्कार करवाते हैं, फिर अग्नि संस्कार होता है। अच्छा चल चल, जो कुछ भी लगता है अरेंज कर ले। समय का ध्यान रखना, 3:30 को मेरी फ्लाइट है। जितने पैसे लगेंगे ले लेना, किसी को कहने का मौका मत देना कि यह संस्कार तो हुआ ही नहीं। लोग याद रखें, ऐसी व्यवस्था करना, समझा? दया ने फिर कहा, साहब जी आप रुकेंगे नहीं, इसके बाद भी बहुत कुछ करना होता है, जैसे शांति भोज। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ दया, तुम्हें पैसे किस बात के लिए दे रहा हूँ कि तुम यह सब बाकी के संस्कार कर दोगे? मैं बड़ी मुश्किल से 2 दिन का समय निकाल कर आ रहा हूँ, पूरा समय आने जाने में ही जाने वाला है। ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से शमशान, शमशान से एयरपोर्ट, फिर ऑफिस और आधी रात में घर। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती दया, जितना तुम समझ रहे हो। अमेरिका है, भारत नहीं। और फिर मैंने पापा को किस चीज़ की कमी होने दी है? तुम तो हमेशा उनके साथ रहकर देख रहे हो ना। मम्मी पापा ने मुझे इस मुकाम में लाने के लिए मेरे साथ स्वयं भी खूब मेहनत और त्याग किया है। किसी संस्कार के नाम पर बैठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब वे लोग करते हैं जिनके पास पैसे कम और समय ज़्यादा होता है। फ़ोन रखो दया, मैं डेस्टिनेशन में हूँ। दया ने फ़ोन काट दिया, पर उसकी बातें मुझे छू गईं। इंडिया के लिए फ्लाइट टेक ऑफ होते ही मैं फ्लाइट में अपने पुराने दिनों में खो गया। मैं अपने माता पिता का इकलौता संतान था। पापा GM थे, मम्मी भी MSc की हुई थी पर जॉब नहीं करती थी। उन्हें हाउसवाइफ भी कहना गलत होगा। कुछ क्लब के फंक्शन, सोशल वर्क आदि में व्यस्त रहती थी, लेकिन मुझे पढ़ाने में कभी कसर नहीं छोड़ती थी। जब मैं 3 वर्ष का था तब शहर के बड़े स्कूलों के लिए एग्ज़ाम होते थे। मम्मी ने मुझे खूब मेहनत करवाए, मैं 5वीं रैंक में आया। मेरा एडमिशन तो हो गया, परंतु मम्मी को हमेशा अफसोस रहा कि मैं 1st क्यों नहीं आया। मम्मी ने मुझे रात 8 बजे से 12 बजे तक सिलेबस तैयार करवाए थे। ऐसा अक्सर मेरे बड़े हो जाने पर भी मुझे बताया करती थी। फिर पापा के बॉस के बेटे रोहित का एडमिशन शहर के दूसरे बड़े स्कूल में हो गया। पापा और मम्मी को भी इच्छा हुई, हमारा सोमेश भी इस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ सकता। फिर क्लास 3 में मम्मी ने मुझे इस स्कूल की तैयारी करवाई। तब भी मम्मी बीच बीच में पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम का जिक्र किया करती थी। दूसरे बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाने के बाद मम्मी मुझे पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटीज़ में भी बिजी रखती, कभी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम, डिबेट, ऐसे और न जाने क्या क्या। मम्मी के सर्कल में जितनी आंटियाँ थीं उनके बच्चे जिस कॉम्पिटिशन में भाग लेते, मम्मी मुझे भी उसमें भाग लेने को प्रेरित करती और अपेक्षा करती कि मुझे 1st या 2nd तो आना ही है। इसके लिए स्वयं भी मेरे साथ मेहनत करती, उनसे न हो पाता तो ट्यूशन लगाकर मुझे प्रवीण बना देती। हमारे घर में 3-4 अलमारियाँ तो मेरे कप और मेडल से भरे पड़े हैं। सर्टिफिकेट की फाइल थी। मम्मी कहती थी, बेटा जिंदगी उन्हीं की है जो कामयाब है। देखो लोग तुम्हें कितनी हसरत भरी निगाह से पछताते हुए देखते हैं कि उनके बच्चे तुम्हारे जैसे क्यों नहीं। पापा अपने दोस्तों से मेरी कामयाबी की ही चर्चा किया करते थे, साथ में अपने द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भी जिक्र कि कहाँ से कोचिंग कराया, कहाँ से क्वेश्चन पेपर का इंतज़ाम हुआ, सोमेश कितने घंटे मेहनत करता है आदि। मम्मी के गॉसिप का केंद्र भी मैं ही हुआ करता था। मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। यदि मेरी मम्मी पापा मुझे कामयाब बनाने के लिए इतना कुछ करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, तो इसमें बुराई है क्या है? मुझे भी कड़ी मेहनत करके हर वो मुकाम हासिल करना चाहिए जो आम लोगों के सोच के बाहर हो। हमारे घर लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। TV थी पर हम देखते नहीं थे। हम तीनों की एक दुनिया थी,
कुछ वर्कर्स थे जो घर का सारा काम किया करते थे। हम रोज सुबह

साढ़े पाँच को उठ जाया करते थे, क्योंकि साढ़े छः को स्कूल की बस होती थी। मम्मी टिफिन में कुछ हेल्दी नाश्ता दिया करती थी ताकि मैं कड़ी मेहनत कर सकूं। ढाई बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, साढ़े तीन तक मैं घर पहुंचकर फिर खाना खाने के बाद पौने पाँच तक सो जाता था। फिर पाँच बजे से कोचिंग, कॉम्पिटिशन की क्लासेस जो आठ बजे तक होती थी, फिर घर आकर डिनर, थोड़ी देर अकेले चेस खेलना और साढ़े नौ से साढ़े ग्यारह तक पढ़ाई और रिविज़न किया करता था। सैटरडे संडे रिविज़न होमवर्क में निकल जाते थे। कितनी व्यस्त जिंदगी थी हमारी। यही कारण है मैं JEE में अच्छे रैंक से निकला। IIT पास आउट होने के बाद मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। कुछ ही महीनों में मुझे न्यूयॉर्क आकर काम संभालना पड़ा। मैंने महसूस किया केवल इंजीनियरिंग ही पर्याप्त नहीं है, मैंने वहीं से MBA कर लिया। आज एक बड़ी नामी कंपनी में CEO हूँ। मम्मी पापा बहुत खुश हुए मेरी कामयाबी से, मैं कामयाब हूँ। इसी बीच मैंने जैमिनी से शादी कर ली। वह भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त है। हमारे दो जुड़वा बच्चे सरोगेसी से हैं। जैमिनी ने उनके लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हमारी हॉलीडेज पे मुलाकात होती है। JEE की कोचिंग के समय मेरी स्मिता से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। वह बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की थी। उसके साथ बातें और पानीपुरी खाना मुझे बहुत पसंद था। उसने ही मुझे पानीपुरी की लत लगवा दी थी। इसी बीच जब मैं थोड़ा सा बीमार हुआ तो मम्मी ने इंक्वायरी शुरू कर दी, क्या तुमने बाहर का खाया है सुमेश? मैंने कहा हाँ। कौन है जिसका मन पढ़ाई के अलावा कहीं और भी लगता है? मम्मी, स्मिता। किस स्कूल से है वह? क्या रैंक है उसका स्कूल में? मैंने कहा पूछा नहीं। मम्मी फिर बोली, बेटा ऐसे ही बच्चे अच्छे रैंक वाले बच्चों को लेक्चर से भटका दिया करते हैं। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, कल से थोड़ा रिजर्व रहा करो और दूर भी रहो उससे। मम्मी की बातें दिमाग में कुछ ऐसे घर कर गईं कि मैं फिर कभी उसकी ओर ना देखा, पर जिंदगी के सुखद पलों में वह एक यादगार लम्हा है। इन्हीं ख्यालों में हल्की नींद आ गई। कुछ घंटे में फ्लाइट लैंड कर गई। कनेक्टिंग फ्लाइट से मैं एयरपोर्ट आ गया। जब मैं टैक्सी से शमशान पहुँचा, देखा दया ने सारी व्यवस्था कर दी थी जैसा मैंने उससे कहा था, और जो कुछ वह जानता था, रिश्तेदारों ने जो बताया, पंडित जी ने, वह सब कुछ दया से करवा लिया था। मुझे बस मुखाग्नि देनी थी। मैंने वह क्रिया की, सबको थैंक यू कहा और वहीं कुछ देर बैठ गया, विचार शून्य। मैं कुछ देर बैठा रहा, अचानक घड़ी पे नजर गई, साढ़े बारह हो चुके थे। मैं उठा और दया को आवाज़ दे कहा, दया मेरा समय हो चुका है, तुमने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, बाकी के रस्म भी ऐसे ही कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कहते हुए मैं टैक्सी में जा बैठा। अगले दो घंटे में मेरी दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। जब दया आदि घर लौटे तब बुआ जी ने दया से कहा, दया हम भी चलते हैं, कुछ दिन तो तुम यहाँ रुकोगे ना, या सोमेश जैसा आदेश दे तुमको वैसा ही करो। दया ने कहा, बुआ जी उन्होंने कहा है शांति भोज करवा देना। बुआ जी ने कहा, नहीं नहीं दया, इसकी ज़रूरत नहीं है। समाज में भी अक्सर बातें उठती रहती हैं, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। भैया की मौत एक विचार फिर से समाज के सामने रखेगी कि क्या सही है और क्या गलत। पर मेरी एक बात मानना, थोड़ा सा भोजन और पानी कुछ दिन उनको और दे देना, चलती हूँ। कहते हुए बुआ जी जाने लगी। दया ने कहा, ठीक है बुआ जी। पड़ोस की दो चार औरतें जो अब तक बैठी हुई थीं, बुआ जी के पीछे पीछे यह कहते हुए जा रही थीं कि सोमेश की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत के अलावा और कुछ देखा ही नहीं, जज्बातों से कभी वह रूबरू हुआ ही नहीं, यह सब उसी का नतीजा है। कहते हुए वह भी चली गई। दूसरे दिन दया ने बड़े साहब की राख और अस्थि समेटकर नदी में बहा दिया। हीरा ने घर की साफ सफाई कर दी। दया स्वयं दाल चावल बनाकर पानी के साथ 10 दिनों तक रखता रहा, पर हर शाम वह अपने घर चला जाया करता था और सुबह 8 बजे घर आ जाता था। भीमा, मालती और चंपक ने आना छोड़ दिया। 10 दिनों बाद दया ने फोन कर मुझे सारी बातें बताई और कहा, साहब जी आप जब भी

0: आए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे घर के बरामदे में दाहिनी ओर आपके घर की चाबी टंगी मिलेगी। रखता हूं, आप व्यस्त होंगे, कहते हुए उसने फोन काट दिया, पर उसकी बातें दिल छू गईं।
1: बहनों, अभी आप सुन रहे थे मार्मिक कथा चुभन। कहानीकार थी डॉक्टर आभा मिश्रा। अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की स्वर में। पानी कभी ज्यादा बरसे तो बाढ़ आ जाता है और कम बरसे तो सूखा पड़ जाता है, मगर जब कभी आंखों से बरसता है तो दिल में उफान आ जाता है। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म माचिस में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं विशाल।

0: बहनों, नवजात शिशु के कपड़ों का बहुत ही खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नवजात शिशु की त्वचा इतनी कोमल और संवेदनशील होती है कि थोड़ी सी लापरवाही स्किन इन्फेक्शन, सर्दी खांसी या अन्य बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए नवजात शिशु के कपड़े हमेशा अलग धोएं और गर्म पानी में धोएं। डिटर्जेंट पाउडर भी सौम्य क्वालिटी का यूज़ करें और उसमें धोने के बाद एंटीसेप्टिक से एक बार फिर से ज़रूर खंगाल लें। बहनों, गर्मी में ठंडे पानी से नहाने का मजा ही कुछ और होता है, मगर ठंड में, जी हाँ बहनों, अपने दिनचर्या के कामों में हम पानी का इस्तेमाल करते ही हैं, मगर सही तरीके से करने से जल संरक्षण में मदद होती है। तो आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर, सुलक्षणा पंडित और आशा भोसले को फिल्म पति पत्नी और वो में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से

0: खिड़कियों से
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।
2: ज्यादातर बच्चे एक ही प्रकार का खाना पसंद करते हैं। अब जैसे स्कूल खुल गए हैं तो मम्मियों की सबसे बड़ी परेशानी होती है कि स्कूल के टिफिन में क्या दें। तो स्कूल में टिफिन आप यही सोचकर बना दीजिए कि बस रोज एक नए अंदाज में, जैसे रोटी सब्जी, हमेशा रोटी सब्जी ही नहीं बल्कि कभी रोल बनाकर दे दीजिए या ग्रिल करके या फिर पिज्जा बनाकर। बच्चे खुश हो जाएंगे और मम्मी भी टेंशन फ्री। और स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए इंटरनेट में आसानी से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो बहनों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ईमेल के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारा एड्रेस है raiapkichitti11@gmail.com। और अब अपनी सखी पारोमिता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम बिंदिया। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं। चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत राजू बन गया जेंटलमैन फिल्म से, आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत मदन पॉल का, संगीत है जतिन ललित का।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। आकाशवाणी के

0: चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: करण अर्जुन फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है इंदी वर्णी, संगीत है राजेश रोशन का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार

0: 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम का आखिरी गीत मिस्टर बेचारा फिल्म से आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
4: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
1: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
5: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
6: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
5: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
1: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता

0: को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
1: The global south should be enabled.
2: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
3: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशंस को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने

0: बाती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM एंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। अब पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला गीत तीन देवियां फिल्म से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की। संगीत है ST परमन का।

0: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फराए
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें।
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए
8: कहिए कहिए।

0: OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लता मंगेशकर की आवाज में लीजिए अब सुनिए बरसात की एक रात फिल्म का गाना। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत है आरडी परमन का।

0: सरजी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: अजनबी फिल्म का ये गीत था किशोर कुमार की आवाज में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार आर डी बर्मन।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़थो फिर पढ़ के भुला जाथो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी न बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग माँ माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बरते बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा है संझा कुन 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तेहा मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत आर डी बर्मन का था। फिल्म थी बरसात की एक रात। कार्यक्रम का अगला गीत दूसरी सीता फिल्म से, आवाज आशा भोसले की, गीत गुलजार का, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए बेमिसाल फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने।

बेमिसाल फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी, संगीत था आरडी बर्मन का। और इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। संध्याकालीन सभा में संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम के साथ 4 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।
3: The global south should be enabled.
4: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ICC महिला T20 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको सिटी में आज सुबह हुए मुकाबले में मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व ग्रुप चरण में अपने तीनों मैच में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. He said it witnessed the suspension of civil liberties, curbs on freedom of expression and the arrest of political leaders, journalists and social workers. In Kolkata, the death toll in the Tarazola mishap has risen to 9. A total of 29 persons were brought to the hospital following the incident. Chief Minister Shubhendu Adhikari informed in the State Assembly today that the perpetrators of the incident would be brought to justice. He said rescue operations are continuing at the accident site. He has announced 10 lakh rupees for the next of kin of those who died in the mishap and 1 lakh rupees for the injured. Prime Minister Narendra Modi has also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees to the next of kin of each deceased and 50,000 rupees each to the injured. The two-day BRICS Energy Ministers meeting has begun in Gurugram, Haryana, under India's BRICS Chairship 2026. Union Power Minister Manohar Lal Khattar has said energy is crucial for economic growth, social progress and human development. Addressing the meeting, Mr. Khattar said affordable, reliable and sustainable energy is essential for achieving development goals and the sustainable development goals. The BRICS Energy Ministers meeting will continue till tomorrow. Discussions are focusing on strengthening cooperation in areas such as energy security and sustainability, energy access and equity, and innovation. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking, and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jayashankar said the inclination to assert differentials is greater and capabilities too are deployed with less hesitation.
3: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
5: Dr. Jayashankar also underscored the need for greater international cooperation in tackling global challenges, invoking India's age-old philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is a family, as a guiding principle for fostering a more collaborative world order. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude, which caused multiple buildings to collapse in Caracas and surrounding areas this morning. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Authorities are continuing rescue and recovery operations in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 30th of this month. IMD predicted heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Jharkhand, Konkan, Goa, Maharashtra, Telangana and Odisha till tomorrow. In football, South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey today. Thapelo Maseko hit the only goal for South Africa in the Group A match. Earlier, Mexico defeated Czech Republic 3-0 to win all three of its World Cup group stage matches for the first time in Mexico City this morning. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.

जहां कहीं भी हैं, जिंदगी चैन सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो, इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते हैं शो का आगाज। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप ही का शो है जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के नगमे जो आप हमें भेज सकते हैं मैसेजेस के जरिए। कहाँ पर? यकीनन इसी नंबर पर। 9868 68753 है नंबर और आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। और जब तक मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है जो आप तमाम सुनने वालों के लिए है।

जी यकीनन आपका और हमारा जो साथ है हमेशा हमेशा बना रहे, हम इसी बात की हमेशा दुआ करते हैं। और देखते हैं सबसे पहला जो मैसेज है किन्होंने हमें भेजा है, कौन है जिनका मैसेज हमें मिला है। मोहम्मद सईद अब्बासी हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमें मिला है, इनके साथ हैं इनका पूरा परिवार जो कि इस वक्त एफएम गोल्ड सुन रहा है और हमें मैसेज भी कर रहा है। इसके अलावा कौन है हमारे साथ, भाई मूसा शेख हैं हमारे साथ जिनका मैसेज हमें मिला है। विजय सुरालकर हमारे साथ हैं, हरजिंदर सिंह भाटिया हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमें मिला है, कमल का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है, और मोहसिन रज़ा हमारे साथ हैं जो कि हमें मैसेज करते हैं इस वक्त, और कौन है हमारे साथ, शम्सुल कमर राही का मैसेज भी हम तक पहुंच चुका है। और तमाम मैसेजेस हमारे पास आते जा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं हमेशा कि आप सभी लोगों के मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कर सकें और आपके नाम पढ़ सकें। यकीन मानिए इस बात की हम सबको बहुत खुशी होती है। अमोल मनकर भी हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमको मिला है, महाराष्ट्र से इनका मैसेज आया है। आगे बढ़ते हैं, बोधराज खुरवाल हैं जिनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है हमारे साथ, इसके अलावा तनु है हमारे साथ वैशाली से, इनका मैसेज आया है हमको, एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है। चलिए पहले उसको पूरा करते हैं, उसके बाद आप तमाम सुनने वालों के नाम मैं दोबारा से पढ़ूंगी।

चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, देखें कौन है जिनका मैसेज हम तक पहुंचा है। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमको मिला है। आकांक्षी पावा हमारे साथ हैं जो कि हमें मैसेज करती हैं। इसके अलावा बलबेश पनवार हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमको मिला है। प्रवीण रानपारा हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में और अपने मैसेज हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा कौन है, मोहम्मद मूसा शेख का मैसेज भी हम तक पहुँच गया है। और देखें कौन है जो FM गोल्ड से इतनी मोहब्बत करते हैं और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में जो शामिल हैं वो हैं सीताराम कागरा हैं, गोविंद परमार हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमको मिला है, जगन्नाथ पटेल हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, मोहम्मद इरशाद का मैसेज भी हमको मिल चुका है। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा है मुकेश कश्यप जो कि हमें मैसेज करते हैं, निसार अली हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में, हरजिंदर सिंह भाटिया हैं हमारे साथ जिनका मैसेज हमको मिला है, अनिल मोहन का मैसेज हमको मिल चुका है, राशिद हुसैन अंसारी भी शामिल हैं FM गोल्ड में जो कि अपना मैसेज हम तक पहुंचाते हैं। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है। इसके अलावा कौन है, अहमद फूलवाला जो कि हमें मैसेज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने खूबसूरत अल्फाज लिखने के लिए और इतना प्यार भरा मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा कौन है हमारे साथ, रोजी डी केस्टो हमारे साथ हैं जो कि जनकपुरी सहारनपुर से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है, मस्कीन दादा हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में जिनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा कौन है, भारत भूषण हमारे साथ हैं प्रोग्राम में जो कि जिनके बेंगलुरु से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है और इनके साथ हैं इनका पूरा परिवार भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वालों का जो इतनी ही खूबसूरती से, इतनी मोहब्बत से शो को सुनते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमको मैसेज भी करते हैं। और कौन है, विजय बिहारी शर्मा का मैसेज भी हमको मिल चुका है, कहाँ से, चांदनी चौक दिल्ली 6 से इनका मैसेज हमको मिला है, और आर कुमार का मैसेज भी हम तक पहुंच चुका है। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है, निकिता कुलकर्णी है हमारे साथ पुणे से, इनका मैसेज हमको मिला है, महाराष्ट्र से हमको ये मैसेज करती हैं, एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, चलिए पहले उसको पूरा करते हैं उसके बाद आप सबके नाम पढ़ूंगी।

और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, देखें कौन है जिनका मैसेज हमको मिला है। सतीश अनेजा है हमारे साथ जो कि हमें मैसेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो इतना प्यार भरा मैसेज आप हमको हमारे लिए लिखते हैं और हमारा दिल वाकई में बहुत खुश हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा कौन है हमारे साथ, मोहसिन हाशमी हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हमको बस्ती गंज डुडवारा से इनका मैसेज हम तक पहुँचा है। स्वरण सिंह हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा कौन है, बोधराज खोरवाल हैं ही हमारे साथ प्रोग्राम में जो कि उत्तम नगर से इनका मैसेज हमको मिलता है। किशन वंजानी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। प्रवीण राम पारा का मैसेज एक बार दोबारा से स्क्रीन पर नज़र आने लगा है। उत्तम कुमार भगत का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है, कहां से, झारखंड से ये हमको मैसेज करते हैं। इसके अलावा कौन है, प्रकाश गोगिया का मैसेज भी हम तक पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जो इतनी मोहब्बत, इतने खुलूस से आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। सुरेश नारंग हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में जिनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा अशोक डाले का मैसेज भी हम तक पहुंच चुका है। सुरेश नारंग है, ताज मोहम्मद हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। इन्होंने भी बहुत खूबसूरती के साथ इस मैसेज को हम तक पहुंचाया है, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारी मोहब्बत के साथ। आपका शुक्रिया अदा करती हूं जो आप इतने प्यार भरे मैसेजेस हमको पहुंचाते हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे बारे में लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है, स्वरण सिंह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा श्री कृष्णा बत्रा हमारे साथ हैं। माजरत अगर मैं आपका नाम सही से नहीं पढ़ सकी हूँ, आप चाहें तो दोबारा एक बार लिख के भेज दें क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। इसके अलावा कौन है हमारे साथ, मोहम्मद फरमान हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। ज़िला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से इनका मैसेज हमको मिला है। कुणाल सिंह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं जो कि हमें मैसेज करते हैं। इसके अलावा राशिद हुसैन अंसारी का भी मैसेज हमको मिल चुका है। राजकुमार रेवाड़ भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा हमारे साथ है मोहम्मद सईद अब्बासी जिन्होंने गीत की फरमाइश की है। चलिए इसको पूरा करते हैं।

0: जी वाकई आपके साथ वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत जल्द वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत।
1: मम्मी, ये जहाज कहाँ जा रहा है?
2: बेटा, अब तो भारत का हर कोना आसमान से जुड़ रहा है।
3: जब भारत उड़ान भरता है तो उड़ान भरते हैं सपने, जुड़ते हैं शहर, बढ़ते हैं अवसर।
2: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में विकसित हुए हैं 160 से ज्यादा एयरपोर्ट्स। उड़ान योजना से संभव हुआ है छोटे शहरों तक हवाई संपर्क। डीजी यात्रा से सरल एवं सुगम हुई हवाई यात्रा।
3: नागर विमानन मंत्रालय, विकसित होते भारत की नई उड़ान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
5: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
7: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

FM गोल्ड सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत खुलूस के साथ FM गोल्ड सुन रहे हैं और अपने मैसेजेस भी हम तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करती हूँ दिल से, जो कि आप इतनी मोहब्बत FM गोल्ड के ज़रिए हम तक पहुँचाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है जिनका मैसेज हमको मिला है? सुधाकर जाडव हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में, जिनका मैसेज हमको मिला है। जाफराबाद से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। जाकिर हमारे साथ हैं जो कि हमें मैसेज करते हैं। इसके अलावा कौन है हमारे साथ हैं? सुदर्शन मुखी भी शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा सुधाकर जाटव हैं ही और मोहम्मद इरशाद भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अकरम हुसैन प्रिंस का मैसेज भी हम तक पहुँच गया है। उत्तम कुमार भगत भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। शमशुल कमर राही का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है। अंकित कागरा का हमारे पास मैसेज आया है, कहां से? हरियाणा रोहतक से ये हमें मैसेज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इतने प्यारे अल्फाज लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है हमें जिनका मैसेज हम तक पहुंचा है? ये जो मैसेज हमारे पास आया है फरीदाबाद से, हमें निशी और खुशी का मैसेज मिला है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, चलिए उसको पूरा कर देते हैं।

बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है जिनका मैसेज हमको मिला है? जय है हमारे साथ जिनका मैसेज हम तक पहुंचा है। प्रकाश गोगिया भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में, और दीप दर्शन गौर का मैसेज भी हमें मिला है। कहाँ से? मेरठ बाईपास रोड से इनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है? वलीउल्लाह अंसारी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा कौन है हमारे साथ? विजय सुरलकर हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में। सलीम अख्तर का मैसेज भी हमको मिल चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा कौन है? तुलसी मस्कीन हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में। मनोहर लाल गांधी हैं चाणक्य चौक गाज़ियाबाद से, इनका मैसेज हमको मिला है। जाकिर हमारे साथ हैं। विनोद मूनत का मैसेज भी हमें मिल चुका है। मधु किरण भी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं प्रोग्राम में। आफताब अंसारी हमारे साथ हैं और बलदेश पावर हमारे साथ हैं जिनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और इसके अलावा कौन है? कमलकांत गुप्ता हैं जो कि हमको मैसेज पहुंचाते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है? अजीम वकार हमारे साथ हैं इंद्र चौक दिल्ली से, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और प्रकाश गोगिया का एक बार दोबारा से स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला मैसेज हमें किन का मिला है? कौन है? बोधराज खोरवाल हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में, उत्तम नगर दिल्ली से, इनका मैसेज आया है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, चलिए उसको पूरा करते हैं।

बेताब रेडियो क्लब की तरफ से हमारे पास मैसेज आया है जिसमें शामिल हैं हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो कि बहुत मोहब्बत से हमको सुनते हैं। कहाँ से? पटना बिहार से इनका मैसेज हमें मिला है। वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया हमारे साथ शामिल हैं इस वक्त प्रोग्राम में। बिजेंदर विश्वकर्मा का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है। कौशल्या जोशी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं सहारनपुर चंदरनगर से, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। फारूक अली खान हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। अनिल मोहन भी हमारे साथ इस वक्त पहाड़गंज मुल्तानी से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। राशिद हुसैन अंसारी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। अनिल मोहन का मैसेज भी हमको मिल चुका है। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है हमारे साथ? नरेंद्र डूम हमारे साथ हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आप सभी सुनने वालों का जो इतनी मोहब्बत हमें देते हैं FM गोल्ड के ज़रिए। और अगला मैसेज कौन है? हीरामन शेंडे हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में, जिनका मैसेज हमको मिला है। सोनम एकेडमी ये जो ग्रुप है यहाँ से हमें मैसेज मिला है। कहाँ से? एयरपोर्ट कॉलोनी राजकोट से इनका मैसेज हम तक पहुँचा है। और भागवत वर्मा भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। अजीम वकार भी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में शामिल। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। कौन है जिनका मैसेज हमको मिला है? इसके अलावा हमारे पास जो मैसेज आए, एक फरमाइश की है इन्होंने। मनोहर लाल गांधी जी हमारे साथ हैं चाणक्य चौक गाज़ियाबाद से, इनका मैसेज मिला है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान। आइए हम सब सुनते हैं।

लखपत राज का मैसेज हमको मिला है। आनंद पर्वत दिल्ली से हमें मैसेज करते हैं और साथ में प्यार भरा नमस्कार भी बोलते हैं। जी आपको भी दिल से बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया। मेहर अरोड़ा हमारे साथ हैं श्री गंगानगर राजस्थान से, इनका मैसेज हमको मिला है। कौशल्या देवांगन का मैसेज भी हमको मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत भूषण का मैसेज हमें मिला है और रेडियो फैन क्लब की तरफ से तमाम सुनने वाले इस वक्त शामिल हैं। एक गीत की फरमाइश की है और माजरत है कि अभी इसको पूरा नहीं किया जाएगा, फिर कभी कहीं किसी रोज़ आपकी ये फरमाइश ज़रूर मैं पूरी करूँगी। इसके अलावा कौन है, डीके हैं जिनका मैसेज हमको मिला है, बहुत सारे मैसेज इन्होंने हमें भेज दिए हैं। इसके अलावा कौन है, अनुश्री वाली का मैसेज हम तक पहुंचा है और रेडियो के दीवाने क्लब है इनका मैसेज भी हमको मिला है। रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी, निशा डोंगी और बालोद छत्तीसगढ़ से इनका मैसेज हमको मिला है। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है, रजनी विनोद शर्मा है सहारनपुर से, इनका मैसेज हमको मिला है। एक गीत की इन्होंने फरमाइश की है लेकिन उसको हम अभी पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वक्त हमें अभी इजाज़त नहीं देता है। और बहुत शुक्रिया मैं अदा करती हूँ आप तमाम सुनने वालों का जो कि इतनी मोहब्बत इतने खुलूस से मैसेज करते हैं और अपनी मोहब्बत हम तक पहुँचाते हैं। और मन भावन में आज अभी यहीं ये शो इस वक्त ख़त्म करना होगा और अगले शो के लिए फ़िलहाल हमें सुनने होंगे समाचार।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन सकते हैं। 4 बजे हैं, आज की हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है।

सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं, जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं।

0: के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल एक या दो नहीं तीन तीन स्टैब्लिश किए हैं,
1: जी,
0: तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूँ एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज़्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स थ्री सन्स ऑफ माई पेरेंट्स।
0: जी,
1: तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज़्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेज, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज, और फिर आई एम ए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन टा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं, जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: ओके, मतलब पूरा वो।
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली जेएनके का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं जेएनके में।
0: ओके,
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफ़ी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहाँ से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा, तो वापस वो
1: वापस घूम फिर के
0: वापस घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: ऐसा था।
1: बिल्कुल, मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है।
0: अच्छा।
1: तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते।
0: अच्छा।
1: रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडी डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में। तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट इन योर।
0: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफ़ी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है तो आपकी आँखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती हैं कुछ टाइम के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज वो चीज़ एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज़ अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनके लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश करने में बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया
1: जी।
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया
1: जी? मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएँ, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वाज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करने पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वाज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में, तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
0: पूरा लाइफस्टाइल।
1: तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को एस्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं, फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे, एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
0: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
0: तो एक बड़ी टीम हो गई,
1: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
0: बिल्कुल,
1: टू इनकल्केट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
0: अच्छा।
1: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी, तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे जाके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है और वो फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
1: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में पांच टीचर्स लिए आते हैं, पांच टीचर्स और करीब छः सात का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ से के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
0: बस,
1: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
0: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए,
1: हमेशा
0: तो
1: के लिए।
0: बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
1: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
0: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे।
1: जी, जी,
0: तो ये
1: जी,
0: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
1: मैं बिल्कुल आप मैं मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद, बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
0: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे, जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
1: जी,
0: तो वो जो मोमेंट था?
1: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
0: जी।
1: हाँ, बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने इसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
0: ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था
1: जी।
0: आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
1: जी,
0: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है, तो अपने आप में बस सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल सर, एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है,
1: जिसको कि NTA कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या 5वीं में हैं
0: जी,
1: दे कैन अपीयर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके,
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं।
0: अच्छा।
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई करें, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें, तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं
0: जी,
1: जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिलता है।
0: यानी कि बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस, अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
1: या जो पास आउट
0: हो चुके हैं
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल
1: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहें हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेज

0: मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड वन से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माई हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टूडे एंड जय हिंद टू ऑल आर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टूवर्ड्स द कंट्री, आई बो माई हेड टू देम माई सेल्फ, अंजलि दो अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली, वंदे मातरम, भारत माता की जय, प्लीज शेयर माई मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेज आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजी लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजी लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया, मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माई रोल वॉज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ अकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 colleges हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड, से एक अकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमाटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
0: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो?
1: जी, बट हाँ, चार साल हो गए वहाँ पे। इन 4 सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत चीज़ों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी वहाँ पे, तो पहले 28 थे, अब करीब 41 हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में। और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पर एक अवसर मिलता है।
0: अच्छा,
1: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफ़ी करी और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहाँ पे लाने में, तो उसमें काफ़ी योगदान किया गया
0: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है?
1: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई है, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपीयर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहाँ पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
0: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फ़ायदा हो रहा है अभी?
1: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना सेकेंड प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं।
0: जहाँ अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो बता रहे हैं आप
1: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
0: अच्छा।
1: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह

0: अच्छा
1: किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीज़ों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं,
0: जी
1: एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
0: ओके
1: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि भाई जो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे
0: जी
1: उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
0: सर लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे
1: जी
0: बातचीत करते
1: जी
0: हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे,
1: जी
0: ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना,
1: जी
0: इतने हाईली सेंसिटिव
1: जी
0: जो ट्रीटमेंट आपने बताए
1: जी
0: उनको और बेहतर।
1: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है। तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं। तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक
0: अच्छा
1: तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहाँ पे जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे। तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
0: जी
1: जी
0: तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
1: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू। तो भाई टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
0: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
1: फिर आगे बढ़ते हैं।
0: सर इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
1: जी जी देखिए, नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की। अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, बट उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहाँ पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहाँ पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहाँ जहाँ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं, इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
0: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट
1: जी जी,
0: और जाहिर है ये बहुत टफ भी रहा होगा।
1: हाँ,
0: इसमें फिर किस तरीके का आपको,
1: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
0: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
1: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
0: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर पाए।
1: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेके चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेके चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
0: यानी कि वो जैसे

0: अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
1: जीवन शैली है
0: जीवन शैली है, वो
1: जी,
0: एक लाइफ
1: इट्स अ वे ऑफ
0: स्टाइल
1: लाइफ,
0: बिल्कुल अलग
1: इट्स अ
0: है
1: वे
0: वो,
1: ऑफ लाइफ,
0: और
1: यस
0: बहुत ही स्पेशल है मैं समझता
1: एब्सोल्युटली
0: हूँ।
1: एब्सोल्युटली।
0: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के भी एक
1: जी
0: जज्बा पैदा हो।
1: जी
0: तो इस चीज़ में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
1: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ। सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है,
0: जी
1: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये ज़रूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि
0: जी
1: फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स,
0: जी
1: 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक इंथुजियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाएँ,
0: सर्विस
1: नेवी
0: दे
1: में जा पाएँ, एयरफोर्स में जा पाएँ। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ
0: बिल्कुल
1: लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो
0: जी
1: बरकरार रहे,
0: बरकरार रहे,
1: तो वो एक
0: वो
1: बहुत
0: जोश और जज्बा
1: बहुत
0: और देशभक्ति
1: वो
0: की जो भावना
1: जश्वा।
0: है वो बरकरार
1: एग्जैक्टली
0: रहनी चाहिए।
1: एग्जैक्टली
0: सर
1: एग्जैक्टली
0: एक चीज़ यहाँ भी बताइएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसी,
1: जी जी
0: तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
1: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो
0: अच्छा
1: एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ
0: जी
1: सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
0: अच्छा
1: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में, और वो अपना एनसीसी का 11th 12th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है।
0: अच्छा
1: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी। तो
0: ओके
1: एग्जाम आपको एनसीसी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपेयर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी, एसएसबी आपने पास कर लिया
0: अच्छा
1: तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द अकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हम जो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए, और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में
0: एग्जैक्टली
1: इंक्लूड कर सकते हैं।
0: कम से कम उनके
1: जी
0: अंदर वो
1: जी
0: चीज, वो
1: राष्ट्रीय
0: जज्बा, वो
1: भावना
0: भावना
1: और राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट ना।
0: अपहोल्ड, बिल्कुल
1: यस
0: बिल्कुल, वो
1: यस
0: चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए, और
1: बहुत
0: उसके अंदर वो जोश और जज्बा, और
1: जी
0: देश देश के साथ जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि
1: माध्यम
0: हाँ भाई
1: होता है।
0: क्यों वो
1: जी
0: अपने देश से मोहब्बत करता है और वो क्यों
1: बिल्कुल
0: उसका जान निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है।
1: जी
0: सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे, और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे
1: जी
0: अब आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो
1: जी
0: क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड
1: जी
0: किया जा रहा है उसको।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: यहां पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में, और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहां पर आपके लिए प्ले कर सकें।
1: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
0: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी वीएसएम। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश सोल्जर्स शाहिद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की पसंद का ट्रैक आप भी एंजॉय करें। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज़ हर जगह है, हर चीज़ में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज़ हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज़ कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज़ करें, चाहे आप किसी चीज़ को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज़ बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो वहाँ पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में डायग्नोस्टिक में AI विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि आपने MRI करा, MRI को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, वो हमेशा चाहिए होगा। देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, वो उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीज़ों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटा बेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
0: जी,
1: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीज़ों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करें, उस पर काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है
0: जी।
1: तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे
0: जी। AI विल अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज़ को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक
1: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है
0: जी,
1: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि दे विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है, हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
0: सर, AI पर हमने बात की, और AI तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में
1: जी।
0: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
1: जी,
0: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
1: जी जी जी,
0: तो एक बार और प्लीज अगर बता।
1: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
0: जी।
1: क्लास 5th पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
0: जी।
1: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है। एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज़ चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस।
0: अच्छा।
1: वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा। और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके। यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन।
0: ओके
1: जी,
0: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड RJ सर, जय हिंद। जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी। आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन। आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: भारत माता की जय।
0: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
1: जी,
0: तो
1: जी.
0: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से. तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
1: जी.
0: उसी जिंदगी में लाइफस्टाइल में तो वो सोशल मीडिया के भी काफ़ी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो एनडीए में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं वो, आपने अपने तौर पर जो चीज़ें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा.
1: जी जी, देखिए साहब, सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके पॉजिटिव भी हैं बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है. ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है. तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही इनका फोन का एडिक्शन है. यही लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है. तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
0: जी.
1: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है बस खाली.
0: सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे.
1: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है. तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है.
0: बिल्कुल,
1: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज थॉट तो है ही. आप जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है.
0: सर, एक चीज़ ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता है
1: जी, जी.
0: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
1: जी.
0: तो इससे बचने का कोई तरीका है, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
1: देखिए साहब, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है. हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, किताबें भी ज़रूरी हैं.
0: किताबें,
1: देखिए साहब, आप
0: तो
1: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है. तो देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट येस, यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग. ये बहुत आवश्यक है,
0: ये बहुत जरूरी है
1: जी.
0: और सर, इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
1: देखिए, फौज में, आर्मी में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए हैं.
0: अच्छा.
1: किस तरीके से दूर रहना है. देखिए, फौज में बहुत सारी चीज़ें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए. तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है. तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि
0: अच्छा.
1: भाई कि एज सर्विंग सोल्जर

0: cannot be a part of those apps. Na?
1: Achha, matlab social media account yes, bhi
0: account bhi delete kar diye gaye hain, ban laga diye gaye hain. क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है. आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से. प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत ज़रूरी है.
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहा है.
1: तो लोग क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीज़ें
1: तो डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं.
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीज़ें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है. प्रॉब्ली वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी. अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर में इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों.
1: जी, तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही. आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिस्टनर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की.
0: तो थैंक यू सो मच,
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच
1: आने के लिए.
0: जी,
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे. कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपली केंद्रों से बोल रहे हैं। 5 बजे हैं, हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचौका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, खड़गवा, पंडोपारा, झींगापारा, बोझा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मूड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, पेंडारी, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 44 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चौरपानी, बांसाझाल, आमापानी, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, सोनगिरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन

0: क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये कुड़ेकेला पुरुंगा छाल बोजिया औरानारा बेहरामार लोटान रुपुंगा कोयलार सागरपुर ढोढ़ा गांव केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई जडगा और ईतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर मड़ई कोदवारी कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगुरसिया जुनवानी जोबी नोंदरहा पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़ फुरफुंदी तालदादर तेंदुचुआ पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजय डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारी पानी डूमर घाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले लीजिए सुनिए एक गुमशुदा सूचना। गुम व्यक्ति का नाम राम खिलावन उर्फ राम, पिता लोचन साहू, इनकी उम्र 32 वर्ष है, निवासी हैं आप अमेरा थाना पलारी के। शरीर की बनावट, इनका कद लगभग 5 फीट 6 इंच है, चेहरा गोल, रंग सांवला, शरीर सामान्य है। ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी जानते हैं। ये 14 अगस्त 2017 से लापता है। इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर थाना प्रभारी पुलिस थाना पलारी जिला बलौदाबाजार भाटापारा को सूचित करें। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की ऑफ टिप कमेंट्री आप सुनेंगे शाम 6:30 से 6:45 तक, शाम 7 बजे से 7:30 तक, रात 8 बजे से 8:45 तक और रात 9:15 से खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे युवाणी, होगा इसमें क्रम अपन गोट और क्रम हेलो मितान और सुनेगा अंतस के आरोप। शाम 7:30 पर किसानवाणी में आज के सलामी सुनेगा वर्षा के पहली पशु के आवास, चारा के प्रबंधन, रोग राय और टीकाकरण, इस विषय पर डॉक्टर भूपेंद्र सिन्हा विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी कुरुत द्वारा दी गई जानकारी। और सुनेगा 12 वर्षों में कृषि में उपलब्धि, खेती की लागत घटाने का आधार, नैनो तरल उर्वरक, इस विषय पर जानकारी। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे रात 10:45 पर।

थे सभा के शेष कार्यक्रम। और अब आपको बता देते हैं हमारे केंद्र से कल की सभा से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। कल रात 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन, करंट अफेयर्स इस कार्यक्रम का समय होगा कल रात 9:30। ये दोनों ही कार्यक्रम श्रोताओं हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम इनसे मिलिए में सुनिएगा छत्तीसगढ़ के गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे रमाशंकर। कार्यक्रम नवा बिहान में सुबह 9:00 आप सुनेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर श्रीमती ममता भगत, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर से बीरभान साहू के गोटबात का दूसरा भाग। सुबह 10:00 सुनेगा छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता। ये कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति होगी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:00 सुनेगा उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी पर बजाया राग बसंत बुखारी। इसी कार्यक्रम में दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे पंडित मुकुंद भाले का तबला वादन। दिन में 11:05 पर सुनेगा प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम अनुराग धारा, जिसमें आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत संजय उपाध्याय से। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी दिन में 12:00, कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट और एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। और श्रोताओं की पसंद पर आधारित छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम सुर सिंगार का समय होगा दिन में 12:30 पर। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: काज बरोबर धर्म नहीं, काज बरोबर पूजा, जिम्मेदारी ले बढ़के जगमा, कर्म नहीं है दूजा।
1: जेन मनखे ह अपन काम ला बोझ बरोबर मानथे, ओकर भाग घलो ह ओला पाछू कोती तानथे।
0: संगी हो समझौती के बेरा है, युवानी के डेरा है, चाय के सुवाद संग युवानी के मजा लेना है। आज के संझा है बड़ खास, काबर गुठियाए बर आगिन आपके संगवारी दुर्गा साहू
1: और ललिता साहू। आज
0: त दोनों के झोंका माया भरे,
1: राम राम जय जोहार।
0: वैसे संगवारी हो, आप मन ले तो भेंट होते रही थे, फिर आज मोर भेंट मोर संगवारी ललिता संग हो है, पहली बेरा। कैसे ललिता?
1: हाँ संगी, आज पहली बेरा भेंट हुआ थे, फिर लगत नहीं है, ऐसे लगत है हमन तो लंगोटिया संगी आन।
0: यही तो हम छत्तीसगढ़िया के पहचान है संगी, सबो बेरा ऐसे मिलथन जैसे हमन हा जन्म जन्म के संगवारी हरन। और छत्तीसगढ़िया हम का होते पता है, कभू भी ककरो ले मिल कोनो न कोनो नाता हा जुड़ जाते।
1: हाँ संगी, और बता का बूता चलत है?
0: मोर काम तो इंद्रदेव के हाथ में है संगी, पानी गिरत नहीं है और मोर काम शुरू होवत नहीं है।
1: अच्छा, ऐसे काबर?
0: गर्मी लगते ना संगवारी, कर देती
1: तोरो गोट ना संगी।
0: और बता ललिता, तोर काम बने चलत है?
1: काला बताओ संगी, थोड़ किन देरी हो गए रहे ता ऑफिस मा मालिक हा बड़ सुनाइस, मोला तो अब काम में जाए के मन घलो नहीं करे, ऐसे लगते काम ला छोड़ देवा।
0: ऐसे नहीं कहा संगवारी, देख काम हा हमर भगवान बरोबर होते कैसे, और जब हम कोनो काम के जिम्मेदारी लेथन तो ओला पूरा ईमानदारी ले निभाना हमर धर्म बन जाते। समय की कदर करना सबले पहले जिम्मेदारी आए, जाने।

0: फिर मालिक ला मोर मेहनत नहीं दिखिस, बस मोर देरी दिखिस।
1: ललिता एक बात बताओ, अगर किसान हा सही बेरा मा खेत में नांगर नहीं चलाही, बोवाई नहीं करही, तो का फसल हा बढ़िया होही?
0: नहीं नहीं होवे दुर्गा, सब खराब हो जाही।
1: बस ओसने छमर काम, हमर काम के एक नियम और समय होते। जब अपन काम ला बोझ समझबे ना, ता ओहा तोला भारी लगही, और जब जिम्मेदारी समझ के करबे ता तोर काम तोर पहचान बन जाही। काम के प्रति वफादारी और जिम्मेदारी मन के ला बड़े बनाते।
0: सिरतोन, मोला समझ आ गए संगी, मैं सिर्फ पगार देखत रहे हूँ, अपन जिम्मेदारी ला भुला के रहे हूँ।
1: संगवारी हो, जब हम अपन काम ला काम समझ के जिम्मेदारी ले समझबो ना, काम भर नहीं समझ के जिम्मेदारी समझबो, तो ओला करे में हमला ज्यादा थकान नहीं होवे।
0: सिरतोन, जब हमन ले अच्छा सोच के संग काम करबो तब मानसिक थकावट नहीं होवे।
1: और गई थे ना संगवारी हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
0: संगी हो, जब हम अपन काम के प्रति जिम्मेदार होथन तब सफलता घलो हमर तीर आवत रहते, और ओही मेहनत ले सफलता हासिल हो जाते।
1: देखो संगी हो, आज युवा मन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी में लगे हैं। कैसे ललिता?
0: हाँ
1: फिर देख, पढ़ाई ला पूरा ईमानदारी और जिम्मेदारी ले करबो, ता सफलता कैसे हमारे तीर नहीं आई?
0: सिरतोन काथस दुर्गा, बस अपन आत्मविश्वास, मेहनत, अपन काम के प्रति जिम्मेदार रहना जरूरी है।
1: काज हाँ मनखे के धर्म आए संगवारी, और जिम्मेदारी ले काम करना ही असली करम आए।
0: जब हम आलस ल छोड़ के समय के कदर करथन, पूरा ईमानदारी और जिम्मेदारी ले अपन अपन काम ल करथन, तब हमर जीवन घलो सुघर बन जाथे, और
1: सिरतोन,
0: समाज मा हमर एक नवा पहचान बनथे।
1: एकरे सेती संगवारी हो, आगू बेरा अपन अपन काम ले मया करो, और मया लगा के अपन जिम्मेदारी ला पूरा करो।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवारी हो, आज आए दिन बृहस्पत, और आज के दिन होते क्रम हेलो मितान। ता आवा सुनथन आज के क्रम हेलो मितान मा ललिता साहू ले बातचीत।

0: ये किस्सा और कहानियाँ बुढ़त काल की ये बानियाँ हास हास के झेले संगी यही हमार जिंदगानियाँ मीत मितानी के गोट करैया हमार जन्म संगवारी मंगला हेलो मितान माँ मोर यानी ललिता साहू के राम राम जय जोहार संगवारी हो आप मन ले अलग अलग क्रम में गोठियाए के मौका मिलते फिर आज आए क्रम हेलो मितान के दिन आज के दिन होते संगी मन ले बातचीत करे के आवाज संगवारी हो कौन संगवारी के पहले कॉल लगे है आवाज जान थन
1: हेलो मितान
0: राम राम जय जोहार
1: राम राम जय जोहार
0: आप मन के नाम का है मितान
1: मैं ऋषभ कुमार तिवारी बोला था
0: कहाँ ले बोला था मितान आप मन
1: मैं रहने वाला मध्य प्रदेश के हर हूँ लेकिन रायपुर में पढ़ाई करे हूँ दृष्टिबाधित हूँ और दृष्टिबाधित लीगा

0: मित्र भी पढ़ा था प्राइवेट स्कूल में।
1: बताओ अपन कैसे हो? हाँ मित्र
0: बताओ, बताओ रायपुर के थी पानी वानी कैसे है अभी?
1: अभी तो पानी एकदम झमाझम गिरत रही स्मितान कल।
0: अच्छा, यहाँ तो अभी थोड़ा कम है मौसम, ठीक मतलब घाम करे है, पानी वानी नहीं गिरा थे उतना खास।
1: अब बताओ अपन आज कौन गाना ला सुनना चाहता था?
0: मोला केदार यादव जी के गाना सुनना है, भूले बिसरे एको दिन तो मुरंग ना में बरसे बादर, पानी गिरते कि नहीं है जब काम ला पानी चाहिए तब का।
1: सही कहा था मितान, तो लेवा सुनाओ अपन के सुघर गाना ला।

0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस रे बादल,
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरस रे बादल,
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम।

0: कसला कथे मुमराए बैठे नगर
1: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरसे बादल
0: भूले बिसरे को दिन तो मोरंग नाम बरसे।

0: हेलो मितान, मैं ललिता बोला था, आप कौन बोला था?
1: सूरज यादव बोला था, खुड़ियावान राजा के लिए।
0: राम राम जोहार।
1: राम राम जोहार मितान।
0: बताओ मितान, अपन कैसे हो?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैडम।
0: और आप मन का करत था आजकल?
1: किसानी काम, बकरी उकरी भी चराते।

0: अच्छा, तो आप मन आज कौन सा गाना ला सुनना चाहा था?
1: वो आगे गुंगवा थे सगा सावन के झड़ी में कई एक गाना हवाई
0: गीतकार कौन हरे?
1: वो भुला गए हम, एकदम सुरता नहीं।
0: अच्छा, तो ले वो सुना आप मन के गाना ला।
2: तोरे आगे गुंगवा थे सगा झड़ी मा सावन के, ए सगा
3: का ए सगा

0: हेलो मितान, राम राम, जय जोहार।
1: हेलो मितान,
0: कैसे हो मितान? आपन के का नाम है, आपन कहा ले हो?
1: मैं कभी जाऊँ शीतला मंदिर, वाट कमांड एक से पेंटर डबल कमांड थीवर बोलत हूँ।
0: औ मितान, आपन का करता?
1: पेंटिंग करता हूँ, मैं पेंटिंग करता हूँ छात्रावास में। अरे में
0: कतेक ले कहे था वहाँ मितान?
1: अभी मतलब भर्ती बहुत है, अभी आज जाते हैं, अभी 10-15 जन आगे 50 के है कोटा यहाँ। अभी छात्रावास में सब नया नया भर्ती आते है बाहर से, अभी 10-12 जन के हो प्रवेश अभी।
0: छात्रावास में का सुविधा है मितान?
1: यहाँ सब सुविधा है, मतलब रहे के खाना पीना, अभी नया बने हैं वो सब सुविधा है, साफ सफाई वगैरह है, पूरा कर्मचारी है।
0: और कतेक उम्र तक के लेकर मन हावे मितान वहाँ?
1: यहाँ अभी पांचवी छठी मतलब आए हैं, छठी तक के, पहली से लेकर छठी तक के है।
0: हाँ, तो मन की तबियत उबत अभी कम ज्यादा होते रहते?
1: हाँ, तबियत कम ज्यादा होते, बीच बीच डॉक्टर मन यहाँ शिविर लगाते ना, बुलाते राइट डॉक्टर मतलब शिविर लगवाते, महीना 15 दिन चेकअप करवाते पूरा स्वास्थ्य के, और तबियत खराब हो गए तो तुरंत तो

0: पास में है हॉस्पिटल।
1: ठीक है वितान, तो आपन आज कौन सा गाना सुनना चाहता था?
0: अषाढ़ के आगमन है तो अषाढ़ के संबंधित कोई भी गीत। हाँ तो तिरिंद है या तो पूनम शास्त्री के कोई भी गीत सुना दो।
1: ठीक है मितान, तो लेवा सुना आपन के एक सुघर गीतला।

0: राम राम, जय जोहार मितान, कौन बोला था आपन?
1: सुरेश कुमार साहू, बिरपुर कला दनिया गंडई ले बात करत हूँ।
0: हाँ मितान, कैसे है आपन?
1: बढ़िया हैं।
0: और का करता आपन?
1: चले है, एक रद्दर है ना, पानी के इंतजार में है।
0: पानी नहीं आए ले आपन खेती किसानी के इंतजार कैसे करता?
1: नहर आते हैं, ऐसा से सिंचाई करता है। कुछ ऊपर वाले मेहरबान होते तब होते, ऊपर भरोसा ज्यादा रही।
0: तो ए बार का इंतजाम है मितान, अगर बारिश नहीं हो ही तो?
1: ट्यूबवेल के साधन में देखते हैं, हमारे पास सुनी है ट्यूबवेल, लेकिन पास में है मतलब मंगन पानी, तो ओकरे हिसाब से सिंचाई करते हैं।
0: तो किसान मन एक दूसरे ले सहयोग करते कि नहीं?
1: हाँ करते सब एक दूसरे से, अब गांव बसे हैं तो एक दूसरे से सहयोग करते। वो खार में उखर बोर है तो वो लोग सहयोग देते, सहयोग करते होते।
0: तो आवा मितान, आज अपन कौन गाना ला सुनना चाहता था?
1: पंच राम निर्झा के किसानी गीत सुनवा देते।
0: वो राम राम जय जोहार और आवा सुना आपकन के सुघर गीत ला।

0: राम राम, जय जोहार मितान, कैसे हो आपन? का नाम है आपन के?
1: रोशन देवांगन।
0: कहाँ ले?
1: बिलाईगढ़।
0: हाँ मितान, और का करता आपन?
1: मैं साड़ी बुनाई करता, हाथ दर्रा चला था।
0: हाँ, और बतावा कैसे चला था आपन के?
1: हाँ बोले चला था, काम था हमन के 12 महीने काम है, घर में लगा रहे लगे लूम और चला थे।
0: तिहार बार में कैसे चलते आपन के काम मन?
1: अब हमन काम 12 महीना काम वो मैं तिहार विहार के नहीं है कछु, हमन जतका कम साड़ी बनाना तो बनाना छे और सेल हो जाते सब साड़ी है।
0: जगह जगह प्रदर्शनी लगते तो वहाँ आता हो आप मन?
1: हाँ मन नहीं आन, लेकिन वो हमारे गांव में वो हावे ना, जो मन दुकान लगाते ना वो मन जाते प्रदर्शनी में।
0: आप मन के जो कला हाँ। है हाथ बुनाई के, ओकर विशिष्ट कुछ नाम हावे?
1: एक अभी बनाखन साड़ी एक नाम है संबलपुरी साड़ी, उड़ीसा प्रिंट है, उड़ीसा डिजाइन है, उड़ीसा में जाके जटका हम बनाथन और व्यापारी में जाके उन्हें सेल करते हैं।
0: बहुत बढ़िया मितान, तो आप मन के काम है तो फिर भारी अच्छा चलत हो ही।
1: हाँ हाँ,
0: और इसने आगु बढ़ात रहा अपन कला क्षेत्र में, अपन नाम कमावा, हमारे छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करा। तो अब मितान, आज आप मन कौन सा गाना ला सुनना चाहता था?
1: आज वो उठो जवान जागो रे धुराराम मरकाम के आवाज में गीत था,
0: तलेवा सुनो आप मन की सुघर गीत उठो जवान।

0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: मोर पर गंगा मोर पर काशी मोर पर चारो धाम किसानी
1: मोर पर चारो धाम किसानी मोर पर चारो धाम किसानी
0: जियत किसानी मरत किसानी नहीं जानो।

0: सागर के भुइया माँ चित कहे हमर कुरिया,
1: चित कहे हमर कुरिया, चित कहे हमर कुरिया।
0: छत्तीसगढ़ के भुइया माँ चित कर

0: हॅलो मितान.
1: हॅलो दीदी, आप मनला मोर डहारले, माया भरे, प्रीत भरे, दुलार भरे, राम राम, जय जोहार.
0: मतलब पूरा युवाणी परिवार और पूरा आकाशवाणी परिवार के तरफ ले राम राम, जय जोहार. मितान, आप मन के नाव का है?
1: जी जी दीदी, मैं संतोष खड़से बोलता हूँ, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र ले.
0: बहुत धुरिया ले फोन करे है मितान.
1: हाँ दीदी, हाँ, आप मन के जम्मो युवाणी के क्रम कार्यक्रम ला हमन सुनता, और जम्मो कार्यक्रम और आप मन के प्रस्तुति बढ़िया लगते, गुरुतुर प्रस्तुति रही थी आप मन के.
0: आप मन महाराष्ट्र के रवैया हो, तो अतका सुगर छत्तीसगढ़ी कैसे बोल ले था?
1: जी जी दीदी, कहा है ना दीदी, आप मन के युवाणी के और आने आने छत्तीसगढ़िया कार्यक्रम ला हमन सुनता आकाशवाणी रायपुर ले. तो 2019 से हमन आकाशवाणी ले जुड़े हो, जब ले मोबाइल एप्लीकेशन पर आपका प्रसारण हमन ला मिलना हो गया हवे, तब से हमन आप मन से जुड़े हो, और छत्तीसगढ़ी के कार्यक्रम ला सुन सुन के हम थोड़कुन छत्तीसगढ़ी में गुठिया के थोड़कुन प्रयास करते ना दीदी.
0: तो कभू आप मन के छत्तीसगढ़ आना हो से?
1: हाँ, अभी तक तो नहीं आए हैं, और सोचे रहे कि जरूर आऊंगे, एक ऐसा बेरा निकाल के आप मन को जरूर आए.
0: मितान, अपन छत्तीसगढ़ जरूर आहू एक दिन, और यहाँ बहुत सुघर सुघर जगह है जी, हाँ अपन घूमे जरूर जाहू, जैसे जगदलपुर हावे मेन पार्ट हावे, और यहाँ डोंगरगढ़ में बम्बलाई माता मंदिर हावे, तो अपन जरूर आहू, और यहाँ के जो सुघर सुघर जलप्रपात हावे ओकर आनंद लेहू, और अपन का करते मितान?
1: हाँ, हम एक दिन बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते, और जब वो हमन ला बेरा मिलते तो आकाशवाणी रायपुर हमन जरूर ट्यून करूँ.
0: ठीक है मितान, ता आवो आप मन के आज के गाना ला जानथन, ता आप मन आज कौन सा गाना ला सुनना चाहत हो?
1: ओ दीदी, गायक कलाकार लक्ष्मण मस्तुलिया और ओके संगवारी मन के गाय कोनो सुगर छत्तीसगढ़ी लोकगीत ला सुना दे हूँ.
0: आज आप मन यहाँ फोन करे

संगी हो आज आप मन ले गुठिया के हमला बने लगीस और आगु घलो गुठियाबो ता ओकर बर हमर फोन नंबर ला लिख लेवाओ 400-3-4-8-2 हमर दूसरा फोन नंबर हावे 400-3-4-8-3 हमर तीसरैया फोन नंबर हावे 400-3-4-8-4 एसटीडी कोड ला जरूर लिख लेवा 0771 हेलो मितान की रिकॉर्डिंग महीना के चौथा गुरुवार के आगू दिन यानी कि बुधवार के 11 बजे ले करे जाते जेकर प्रस्तुति होते चौथा गुरुवार के संगवारी हो आज के क्रम हेलो मितान मा आप मन संग उठियावत रहे में ललिता साहू प्रस्तुत करता रहे दीपक हटवार गीत संकलन बीरभान साहू यही सुघर गोट बात के संग संगवारी हो मोला यानी ललिता साहू ला देवो विदा जय जोहार।

संगवारी को अभी सुनत रहें क्रम हेलो मितान। बातचीत करते समय संगवारी मल्ले ललिता साहू, प्रस्तुत करता रहें दीपक हटवार, गीत संकलन बीरभान साहू। तक्रम हेलो मितान यहीं तक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ललिता, अभी हमन संगवारी मन के पसंद के गीत सुना है। गुरतुर गुरतुर गोट करे हन। कमा क्रम है रोमितान में कैसे?
4: हाँ दुर्गा, आज तो हमर संगी मन बड़ गदगद हो गए हो ही।
3: फिर संगी, आज सिर्फ संगवारी मन के पसंद के गीत भर नहीं, भलू कुखर विचार घलो जाने बर मिलही।
4: फिर मिलही कैसे दुर्गा?
3: मिलही ना ललिता, सबर कर। आज कौन से दिन है?
4: आज बृहस्पति है।
3: और दिन कौन से क्रम होते?
4: अंतस के आरो।
3: एकदम सही पकड़े हस। हम माने आज संगी मन के अंतस के विचार ल जानबो। ता आओ संगी, शुरू करथन आज के क्रम अंतस के आरो। ललिता, कौन संगी मन हा अपन अंतस के विचार ल हमर तीर पठो है भाई, बता डर जल्दी।
4: तो संगी, सबले पहली है धरसीवा बस स्टैंड ले छेदुलाल यादव और सीता यादव मन। इमन लिखते, संगवारी हो जब पारा परोस मा कोनो लेका आगू पढ़त है, ता हमन ला वोकर बढ़ाई मा वोकर परिवार संग खुशी मनाना चाहिए। हमन ला चाहिए कि काकरो तरक्की होवत है, ता वोकर मनोबल ला बढ़ाना चाहिए और जीवन ला सार्थक करना चाहिए।
3: एकदम पोट गोट के है संगवारी हो। कक्का सुघर विचार है संगी आप मन के। आपके विचार हा सीख ले भरे परे है, माने आपके विचार हा सार्थक हो गए। यदि हमन ये ला जीवन में उतार लें, सीतन बात कहाँ संगवारी हो, तब काकरो तरक्की ले हमला सीखना चाहिए कि वो कौन संघर्ष और मेहनत ले आगे बढ़े हैं, और वो कर ये संघर्ष और मेहनत ला देख के हमला ओला सराहना चाहिए, और वो कर ले हमला सीख के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।
4: सही कहा था संगी।
3: और कौन संगवारी मन हा अपन विचार ला पठोए संगी?
4: दूसरैया संगवारी मन है अपन अंतस के आरो मन लेखत है देवरी भाटा पारा ले गन्नूलाल रजक और के आर साहू मन हा। संगवारी हो, हम सबो जन एक ही बात करथन कि पेड़ लगावो, और ये बात सही है, हम सब जन ला पेड़ लगाना है। अगर पेड़ लगाना है तो अभी ले हमला तैयारी में लग जाना चाहिए। जतका जगह लगाना है ओकर बर हमला गड्ढा खोद के रखे ला पड़ी। जैसे समय आही घुरवा खाद डाल के हम पेड़ लगाबो, यही हमर संकल्प है।
3: भाई कतका सुंदर संकल्प है संगवारी हो। आपके विचार है तो एकदम सार्थक है, सकारात्मक है, और अभी तो बेरा घलो आवत है काकर
4: हरेली के।
3: हाँ, माने पानी बरसात के। संगी हो, बेरा है पानी बरसात के, और ये दरी कहूँ पेड़ लगावा थन तो बोला जल्दी पानी मिलही, जल्दी भोजन बनाही और जल्दी अपन बाढ़ी, और बाढ़ी जल्दी बाढ़ी तो कल हमला फायदा घलो हो ही। कैसे ललिता?
4: हाँ,
3: तो सिर तो ना संगवारी हो, आप मन ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगावा और आगू के जीवन ला सार्थक बनावा।
4: तो संगी, तीसरैया जो अंतस के आरो आ है, ओला तय हाँ पढ़ दे।
3: हाँ भाई, संगवारी मन हाँ भाई, तेंदु भाटा मंगल लोटले, उमेंद्र कुमार निषाद महेश्वरी, और संगवारी मन अपन अंतस के गोट लपठोए है ललिता, और कहा थे कि अभी बरसात के मौसम हा शुरू हो गया है। वैसे तो शुरू हो जाना चाहिए,

0: फिर हो ही नहीं है।
1: हाँ।
0: पेड़ पौधा लगाए के सही समय आवत है। सबो जनता ले निवेदन है कि पेड़ लगाओ और ओखर देख रेख करो। और संगवारी मन बतावत है कि मेहा 7-8 साल हो गए हर साल पेड़ लगाथो, आम जामुन सीताफल ये सब के बीजा ला जंगल में फेंक देथो, माने छीट देथो और तरिया मा मोर छीते बीजा आमा के पेड़ हा ए साल फरे के चालू होई से। ए साल 9 ठन आमा फरे रहीस कहा थे।
1: अच्छा।
0: और इला देख के मोर मन हा गदगद हो गे। का बात है भाई, ए फर ला चिरई चिरगुन और लइका मन के खाए के काम आई से फर मन हा। गौठान और मुक्ति धाम में बरगद पीपल के पेड़ लगाए हो कहा थे।
1: अच्छा।
0: जौन हा 10-15 फीट के पेड़ हो गए हैं। जंगल में भी आमा पेड़ तैयार होते, कुछ पेड़ ला तो मोहा बिनैया मन जला दिस। अब मैं अब तक के महसूस करे हो कि जतका छिरी बोकरा गाय गुरु मन नुकसान नहीं पहुंचाए, उखल ले ज्यादा आदमी मन पहुंचाते।
1: सही कहा थे
0: तो संगवारी कहा थे कि मोला आदमी मन ले विनती करत है कि पेड़ पौधा ला नुकसान झन पहुंचाओ, ज्यादा ले ज्यादा पेड़ लगाओ और लगे पेड़ के रक्षा कराओ, जेकर ले हमला फल घलो मिले और छाया घलो मिले।
1: सही कहा था संगवारी। हाँ।
0: सिरतुन संगी, आपके विचार हा कतका बढ़िया है। यदि हमन आपके जैसे ऐसन पहल करबो त पेड़ के कमी हा नहीं होवे। कैसे ललिता?
1: हाँ संगी, और एकर ले हमन के जो वातावरण है ना वो हमेशा शुद्ध रही, ना पानी की कमी हो ही, ना अतका गर्मी पड़ी।
0: देख ना, गर्मी होवत थे कि सब कहा थन, कूलर पंखा लेवा थन।
1: पंखा कूलर ले छोड़ संगी, हमन एसी तक को लगावा थन, ग्लोबल वार्मिंग ला ध्यान में भी नहीं रख पा थन।
0: और एकरे जगह कहूँ पेड़ लगाए में ध्यान देबो ता पैसा घलो बाची, बिजली घलो बाची और हमला शुद्ध हवा घलो मिली, अब वो कर ले हमार तबियत घलो ठीक रही, माने सबो प्रकार ले हमन स्वस्थ रही बो। कैसे?
1: हाँ संगी, और सबले ज्यादा जानते का हमन ला ना शुद्ध बिना कार्बाइड वाला आमा खाए ब मिली।
0: सिरतन संगी हो, ई क्रम संग हमारा संगवारी मन अपन अंतस के विचार ला पठो है सिमगा ले लव कुश सेन और प्रहलाद सेन मन हा। और संगी मन लिखे है कि हमर युवानी कार्यक्रम के जम्मो संगवारी मल्ला आकाशवाणी के 90 बरस के स्थापना दिवस के अब बड़कन बधाई और शुभकामना है। और संगवारी मन अपन विचार में कहा थे कि देश के बानी कहैया आकाशवाणी अपन स्थापना के 90 बरस मनावा और हम श्रोता मन के जीवन में नवा उत्साह मंगल और ज्ञान शिक्षा संग प्रकृति संस्कृति और साहित्य और मनोरंजन के नवा जोत जलावा थे। आकाशवाणी राष्ट्रीय एकता और पारिवारिक एकता बनाए में महत्वपूर्ण योगदान देवा थे। आज कतको युवा संगवारी मन अपन भविष्य के क्षेत्र में सफलता के सीढ़ी पावा थे, जगमा नाम कमावा थे। आकाशवाणी के हमर जम्मो मयारू संगवारी मल्ला बहुत बड़े ये योगदान देवा थे, ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन के मेहनत और मधुर बानी ले सबके अंतस ला जीते के कोशिश करत हो आप मन, एखर बार पूरा युवानी परिवार ला साधुवाद है। संगी हो, ये तो रही से संगी मन के विचार। फिर संगवारी हो, आगू घलो संगी आप मन हा और बने बने विचार हमर ते पठो हो, ओकर बर हमर पता लिख लो। जे संगवारी मन हा पाती के माध्यम ले हमन ला अपन विचार पठो यूमन लिख लो, अनक्रम अंतस के आरो युवानी अनुभाग पोस्ट बॉक्स नंबर 97 आकाशवाणी रायपुर। संगवारी हो, मैं और दोहरावत हूँ, जे संगी मन हा पाती के माध्यम ले अपन विचार पठो वो मन हमार ये पता लिख लो, क्रम अंतस के आरो युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रायपुर, पोस्ट बॉक्स नंबर है 97 और पिन कोड है 4920001। और जय संगवारी मन हा मेल के माध्यम ले अपन विचार ला पठो मन हमार ईमेल आईडी लिख लो, ईमेल आईडी है youtth9@gmail.com और कोड है संगवारी हो y10। संगी हो, ये तो रही आप मन के विचार जाने के क्रम, और यही क्रम संग हमर मन के हो गए जाए के बेरा। कैसे ललिता?
1: हाँ संगी,
0: फिर जाए के पहली बता देथन काली के कार्यक्रम, जेमा आप मन सुनू
1: सेहत और अपनी पसंद। सेहत में है विषय युवाओं में रक्तचाप और पक्षाघात की समस्या और समाधान, डॉक्टर एस एन मढ़हरिया ले दीपक हटवार के भेंट वार्ता।
0: तो संगवारी हो, आप मन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सुनत रहो युवानी। यही क्रम सम अपन संगवारी दुर्गा साहू
1: और मैं ललिता साहू के
0: दोनों ला देवा विदा, नमस्कार।

युवाओं का अपना कार्यक्रम युवाणी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी

0: ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: 6:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में हम अपने प्राइमरी चैनल से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवन, कोचिंग संस्थान, होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाही। मुख्यमंत्री हाथ दिन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस में छत्तीसगढ़ के संग देश भर में आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश में शून्य लेके 5 बच्छर तक के लयका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर राज्य में जन सुरक्षा ला ध्यान में राखत हुए बहुमंजिला भवन, कोचिंग संस्थान, होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री हा मुख्य सचिव ला राज्य भर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के जांच कराए बर कहिन। एकर तहत सबो जिला में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाही। ए दौरान भवन के सुरक्षा, फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, बिजली व्यवस्था के जांच करे जाही। मुख्यमंत्री हा कहे है कि सुरक्षा मानक के अनदेखी करैया मनु पर नियम के अनुसार कार्रवाई करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ले मुलाकात करीन। ए दौरान जन स्वास्थ्य, औषधि और उर्वरक क्षेत्र के संग आने आने विभागीय विषय में चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हा केंद्रीय मंत्री ला जानकारी दीन कि राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था ऊपर लगातार निगरानी रखे जावा थे। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ घलो कार्रवाई करे जाते। संगे संग राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग ला बढ़ावा देवा थे। किसान मनला ए लाभ के जानकारी देबर जागरूकता अभियान घलो चलाए जाते। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा हा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और विकास मन के हित में उठाए जावत प्रयास के सराहना करत हुए हर संभव सहयोग के भरोसा दिलाई। एकर पहली काली मुख्यमंत्री हा नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात कर छत्तीसगढ़ विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास काम और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करी। ए दौरान श्री साय हा छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना के प्रस्ताव घलो राखिन। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय बजट में देश में 3 नवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के घोषणा के उल्लेख करत हुए आग्रह करीन कि एमाले एक संस्थान छत्तीसगढ़ ला दे जाए। उमना बताइन कि छत्तीसगढ़ में दुर्लभ औषधि वनस्पति और जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप ले पाए जाते। केंद्रीय मंत्री हा राज्य में करे जा जन कल्याणकारी काम के सराहना करत हुए सहयोग करे बर बात घलो कहीन। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ले मुलाकात करीन। ए बेरामा संगठन ले जुड़े आने आने विषय के संग प्रदेश के संगठनात्मक गतिविधि के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थी मन ले मुलाकात करके उकर उत्साहवर्धन करीन। ए बेरामा उमनहा छात्र मनला मुख्य परीक्षा बर शुभकामना दिन। जानबा के मुताबिक यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में द्वारिका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्र मनहा सफलता पाए है। एमाले ज्यादा विद्यार्थी जनजाति, ग्रामीण और सामाजिक रूप ले वंचित वर्ग के हरे। नगरी प्रशासन और विकास विभाग प्रदेश में सबो नगरी निकाय के मरम्मत और रख

0: अक्टोबर 22 करोड़ रुपया ले ज्यादा के आपात निधि जारी करे हे। विभाग डहर ले चालू वित्तीय बछर के पहली तिमाही अप्रैल ले जून महीना बर ए राशि जारी करे गे हे। एकर तहत 14 नगर निगम ला 13 करोड़ 76 लाख रुपया जारी करे गे हे। उन्हें 56 नगर पालिका बर 5 करोड़ 18 लाख रुपया स्वीकृत करे गे हे। विभाग हा 124 नगर पंचायत बर घलो 3 करोड़ 66 लाख रुपया जारी करे हे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले गए विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण आकाशवाणी डहरले काली 26 जून के करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे ले 10:25 तक प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहरले तैयार एक कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र ले करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर लेहे आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लेहे हमर वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़बो बाचे समाचार कोती। आज संविधान हत्या दिवस मनाए जाथे। ए बेरा मा देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाथे। ए दिन 25 जून 1975 के लगाए गए आपातकाल के याद दिलाते जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप ले प्रभावित हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा संविधान हत्या दिवस में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य के रक्षा बर दृढ़ संकल्पित रहे लोगन मन ला श्रद्धांजलि दिन। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी हा कहिन कि आपातकाल संविधान ऊपर सीधा हमला रहिस। प्रधानमंत्री हा कहिन कि ए दौरान लोकतांत्रिक संस्था घलो निशाना में रहिन। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सोशल मीडिया में एक वीडियो साझा करत हुए आपातकाल ला भारतीय लोकतंत्र के सबसे काला अध्याय बताइन। उमन प्रदेशवासी मन ले लोकतंत्र सेनानी मन के त्याग और बलिदान ला याद करत हुए संविधान के रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य ला सशक्त बनाए के संकल्प लेके आह्वान करी। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य लेके 5 वर्ष तक के लईका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। उन्हें छोटे लईका मल्ला 29 और 30 जून के मापअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। स्वास्थ्य विभाग हा बालक मन ले अपील करे है कि उमन 28 जून के अपन तीर के पोलियो बूथ मा जाके लईका मल्ला पोलियो के दवाई जरूर पिलाए। राज्यपाल रमेन डेका हा लोक भवन मा वीडियो कॉन्फ्रेंसी के जरिया ले शक्ति जिला के अधिकारी मन के संग चर्चा करके जन कल्याणकारी योजना के जानकारी लेन। राज्यपाल हा जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन ला सबले आगू राखे के निर्देश दिन। उन्हें राज्यपाल हा रायपुर के माना कैंप मा स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर सेरेब्रल पॉलिसी गेट लैब और दिव्यांग जनमन बर संचालित महाविद्यालय के निरीक्षण करके वहां उपलब्ध सुविधा के जायजा लेन। ए दौरान उमन हा दिव्यांग मनला ट्राईसाइकल घलो दिन। वरिष्ठ आईपीएस बद्री नारायण मीणा ला बस्तर रेंज के नवा पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त करे गए। उमन बस्तर आईजी सुंदरराज पी के जगह लिही। इस संबंध में गृह विभाग हा आदेश जारी कर दे है। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आईजी के पद में तैनात रही। एकर पहली उमन दुर्ग रेंज के आईजी के रूप में अपन सेवा दे चुके है। जसपुर पुलिस आ काली 24 जून के जिला के सबो 766 गांव में एक सन जन चौपाल लगा के हेलमेट जागरूकता अभियान चलाइन। ए अभियान ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करे गए है। जसपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के राज्य प्रमुख सोनल राजेश शर्मा हा SSP डॉक्टर लाल उमेश सीला वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान करें। काली छत्तीसगढ़ के संग देश के आने आने जगह मा मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाही। करबला मा सत्य और न्याय के रक्षा बर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उखर साथी मन के शहादत के याद मा मुहर्रम मनाए जाते। ए बेरा मा ताजिया निकाले जाते और करबला के शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान के याद मा मजलिस के आयोजन करे जाते। मुहर्रम के बेरा मा राजधानी रायपुर के संग राज्य के कतकोन शहर मा काली ताजिया निकाले जाही। रायपुर के करबला मा हजरत हुसैन के बड़का कुर्बानी ला याद करत हुए मजलिस यानी धार्मिक बैठका के आयोजन करे जाही। राजनांदगांव में राज्य कर विभाग फर्जी बिलिंग के मामला में कार्रवाई

करत हुए मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरडिया ला गिरफ्तार करे हे। जांच में करीब 76 करोड़ रुपया के कागजी लेन देन और 8 करोड़ 22 लाख रुपया के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामला आगू आए हे। विभाग के अनुसार फर्म बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिल के जरिया ले कर लाभ लेके प्रयास करें। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। प्रदेश मा बहुमंजिला भवन, कोचिंग संस्थान, होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाहि, मुख्यमंत्री हा दीन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस मा छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश में 0 से लेकर 5 बछर तक के लइका मन ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।

0: एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोकसुर।
1: पर निर्भर करते फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये मुसियाही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मन नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
9: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
8: ताहू यार,
10: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: लोकसुर में आइए पहले सुनते हैं महादेव चंद्राकर और साथी के स्वर में ये गीत। इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं ने की है। सिमगा से सविता जैन, प्रदीप जैन, मोनिका जैन, बीना जैन, देवेंद्र जैन और आदिश जैन, हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव और भीष्म दास मानिकपुरी, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे, पावर हाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी वर्मा, ग्रंथ वर्मा, संजय प्रधान और पूजा प्रधान।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज़पेपर मा तेलहा फुलहा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जेन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको,

0: अरे भैया पहली जुन्ना तेल निकाल ले, देकर बाद नवा तेल डालबे।
1: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल काय करू
0: तहू यार।
2: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते जेखर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: अब आप सुनेंगे महादेव हिरवानी के स्वर में ये गीत। इस गीत के लिए फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सिमगा से भारती सेन, विजया सेन, सुनंदा सेन, ललिता सेन, रामेश्वरी मीरा सेन, ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन।

तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट।

0: तभी तो होगी
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुसियाही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन हा गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक, थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चला थे ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: ताहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: खुशी दास मानिकपुरी, बिंदु देवांगन के स्वर में लीजिए, सुनिए ये गीत। इस गीत को आप सभी ने पसंद किया है। सिमगा से लवकुश सेन, प्रहलाद सेन, आदित्य, आशीष और प्रकाश सेन, महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर और भगवान चंद्राकर, भाटापारा से मिलउदास, संतोष, संदीप और यशकुलदीप,

महासिंह चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकार के स्वर में सुनिए ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने, कोटा रायपुर से अरुण वर्मा, अनिल वर्मा, ईश्वर वर्मा और दिनेश सेन, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू, रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन।

ममता चंद्राकर के स्वर में सुनिए ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि वर्मा, खुशी वर्मा और ओजल वर्मा। ग्राम पाहरा अहिवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, संत कंवर वार्ड भाटापारा से मंजीत, लकी सिमगा से सविता जैन और मोनिका जैन।

0: स्थानिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा 1,766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता

0: अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। इसके तहत सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान भवन की सुरक्षा, फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान जन स्वास्थ्य, औषधि और उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को हवा दे रही है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान श्री साय ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों सहित प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्रों ने सफलता पाई है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के हैं। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
1: 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, संविधान की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था, मीडिया जगत के अधिकार को भी छीना गया था। तो इस तरह से संविधान में जो नागरिक को अधिकार है वो अधिकार से भी वंचित किया गया था और कितनों का घर इसके कारण बर्बाद भी हो गया। तो इसीलिए 25 जून को हम सब लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं।
0: महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य साड़ी वितरण में होने वाली गड़बड़ियों, बिचौलियों की भूमिका और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों को पूरी तरह खत्म करना है।
2: जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो साड़ी होता है, अब बड़ा निर्णय हम लिए हैं कि इसको केंद्रीकृत करके डायरेक्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाते में जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से जाए। यहाँ से निर्धारित होगी कि कैसे कलर में रहेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं सहायिका स्वयं खरीदेंगे। कुल मिलाकर यह है कि इसको पारदर्शिता करने के लिए एक बड़ा पहल किया गया है।
0: नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और रखरखाव के लिए 22 करोड़ रुपए से अधिक की आपात निधि जारी की है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून महीने के लिए यह राशि जारी की गई है। इसके तहत 14 नगर निगमों को 13 करोड़ 76 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं के लिए 5 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग ने 124 नगर पंचायतों के लिए भी 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्ती जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा कर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने रायपुर के माना कैंप में स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब और दिव्यांगजनों के लिए संचालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का सत्यापन किया गया। ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची को निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। बैठक में 1 जुलाई से लागू हो रही विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। जशपुर पुलिस ने कल 24 जून को जिले के सभी 766 गांव के ने एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल इन गांव में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस बद्री नारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वे बस्तर आईजी सुंदरराज पी की जगह लेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आईजी के पद पर तैनात थे। इससे पहले वे दुर्ग रेंज के आईजी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मोहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मोहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई शहरों में कल ताजिए निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिले के अभनपुर में चल रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुए। उन्होंने जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत बनाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए। यह शिविर 29 जून तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बरमकेला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। वहीं बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक में करीब 30,51,00,000 रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के चलते आज से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को निर्धारित स्टॉपेज के पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन कल 26 जून को चलाई जाएगी। यह ट्रेन कल भुवनेश्वर से रवाना होकर 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा एक साथ 766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला प्रसारण

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जयमाला कार्यक्रम में। आज संगीतकार मदन मोहन की याद का दिन है। उनकी कुछ बची हुई धुनों पर फिल्म वीर ज़ारा के गाने बनाए गए थे।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ
1: जी,
2: रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर मैं जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है।
1: जी, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं और रेडियो जो है अब मैं देख रहा हूँ, बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं।
1: जी, तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है
2: जी।
1: और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं
2: जी जी जी, जी।
1: तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ?
2: हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहाँ पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हर एक की मर्जी होती है, हर एक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज़ थी
1: जी।
2: क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुना ही हमने ज़िंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो वो रेडियो की न्यूज़ डेली सुनते थे। तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा मैल और ये और वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया
1: ड्रामा में जी।
2: और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहाँ ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे।
1: तो अच्छा, लिखे भी आपने?
2: हाँ, लिखे भी मैंने
1: और किए भी एक्ट भी किए
2: मैं, क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा और मैं आपको छोटी सी चीज़ बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा है हमारा रेडियो,
1: बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं
2: जी।
1: सर, आप रेडियो से जुड़े रहे, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी। तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ, कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे और वहां जाकर चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें।
2: बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था।
1: अच्छा
2: जी। और फिल्म मैंने बना ली थी, मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में। तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए

0: तो मैं थक भी गया था और
1: फिल्म
0: मुझे
1: बनाते हुए।
0: फिल्म बनाते हुए, तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार मतलब मैं कहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है, तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है, तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ।
1: जी जी
0: तो वहाँ मेरी डायरेक्टर से बात हुई, तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ है एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता न्यूज़ रूम था वहाँ पर, वहाँ चला गया। वहाँ पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज़ नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज़ बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ
1: बिल्कुल
0: करते हैं,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन न्यूज़ में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे, तो कुल मिलाकर शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में, जो लाइव जाता था।
1: क्या बात है।
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता
1: हाँ
0: था।
1: हाँ
0: तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन ख़राब कर रहे हैं, ये मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: जी।
0: बोला नहीं मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोला नहीं नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन, न्यूज़ बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया।
1: जी।
0: बस उससे मेरे न्यूज़ चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया। वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी, जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका,
1: अच्छा।
0: वो मैंने स्टूडियो में किया। और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिसिएशन लेटर दिया और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा, लेकिन स्पेशल असाइनमेंट की मैंने,
1: जी।
0: मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से।
1: जी, तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल्स जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह की समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठने ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले, वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
0: देखिए अगर मैं आजकल के न्यूज़ चैनल की बात करूं तो मुझे, मैं पहले बहुत न्यूज़ देखता था,
1: जी
0: आज मैं न्यूज़ देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
1: जी
0: है।
1: फेड अप से हो जाते हैं हम।
0: फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि न्यूज़ का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं,
1: जी
0: न्यूज़ में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज़ जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज़्यादा उनको अपने व्यूज़ नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज़ होती है 80% जो है वो आपको वो बताना ही चाहिए, वो दिखाना चाहिए।
1: जी
0: लेकिन प्राइवेट न्यूज़ चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो हैं वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
1: वो खुद ही बोल
0: वो
1: लेते
0: खुद
1: हैं।
0: ही बोल देते हैं हर चीज़ के, और जो गेस्ट होते हैं आपके, जिनको आप बुलाते हैं,
1: उन्हें बोलने भी नहीं
0: उन्हें
1: देते।
0: बोलने भी नहीं दिया जाता। तो ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है। और जहाँ तक हमारे दूरदर्शन की बात
1: जी,
0: रही,
1: आपने डीडी न्यूज और
0: मैंने
1: नेशनल न्यूज को कवर किया
0: मैंने
1: है।
0: डीडी न्यूज़ में किया, और मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था
1: क्या बात है
0: जी।
1: जी।
0: और हमारे चाहे वो

0: नरसिम्हा राव जी हों या मनमोहन सिंह जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हों, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है और आपके पास प्रेशर बहुत होता है क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहाँ किसी को पता नहीं चलता है बाहर वालों को, वहाँ प्रेशर ये होता है कि वहाँ जीरो एरर चाहिए, वहाँ गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती। तो बड़ा मजा आता था लाइव वहाँ पे। तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे चार चार पांच पांच छह छह जगह
1: सवाल जवाब करने के लिए।
0: और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव।
1: क्या बात है
0: जी
1: जी।
0: तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहाँ एज ए प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का। तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया और दूरदर्शन की न्यूज़ में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज़ ना मिले,
1: केवल सनसनी
0: को फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ लोग बाग सुनना चाहते हैं
1: और इसीलिए सुभाष जी रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है
0: जी।
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं
0: जी।

आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है सबरंग।
1: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते, फिर खाए पिए के मामला में एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो, आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़कीन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
2: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मा सुपर
3: हिट। खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
4: मम्मी मम्मी पापा आगे।
5: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
4: मम्मी प्लेट लाना।
6: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ, कतेक प्लेट ला मैं मांजा धोत रहा हूँ।
7: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मैं नहीं खाना चाहिए।
6: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
5: हाँ जी,
4: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस नहीं रखना चाहिए।
7: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
4: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
3: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: आओ ननको भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
9: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल लगा करूँ
8: तहू यार।
0: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
3: खाद्य सामग्री की सही देख रेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: सबरंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रज्ञा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज जून की 25 तारीख है, साल का आधा सफर तय हो चुका है। हम सब इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी और इंतजार में जी रहे हैं। हवाएं कभी थमी हुई हैं तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट दिल में एक उम्मीद जगाती है, कभी बारिश होती है तो कभी बेचैन करने वाली उमस और गर्मी। जून का यह आखिरी हफ्ता हमें सिखाता है कि राहत मिलने से ठीक पहले का समय सबसे ज्यादा आजमाता है। आइए जून की इसी आखिरी तपन, इस धूप छांव और एक खूबसूरत रोमांटिक इंतजार के नाम सौंपती हूँ आज का यह पहला नगमा।

0: बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला माँ एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते। और अपन खान पान माँ तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती माँ सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला माँ एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते, ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते। और अपन खान पान माँ तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती माँ सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश, इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: तहू यार,
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेखर ले आप और आपके वातावरण

0: सुरक्षित रहे।
1: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, जब इस प्यासी धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो जो सौंधी सी महक उठती है, वो सीधे हमारे बचपन के उस आंगन में ले जाती है, जहां खुशियों के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी। याद है, जब जून की इन शामों में अचानक बारिश शुरू होती थी और हम सब अपनी कॉपियों के पन्ने फाड़कर कागज की नावें बनाने बैठ जाते थे। वो बेफिक्री, वो बारिश के पानी में छपाक से कूद जाना और अपनी कश्ती को तैरते हुए देखकर दुनिया जीत लेने जैसी खुशी मनाना, आज बंद आलीशान कमरों में वो मिट्टी की सौंधी खुशबू और वो मासूमियत कहीं खो गई है। आइए बचपन की उसी याद और बारिश की चाहत को याद करते हुए सुनते हैं यह सुकून भरा गीत।

0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करे। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर हिट।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी मम्मी पापा आगे।
4: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
3: मम्मी प्लेट लाना।
5: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
6: ये मुसियाही लगे है, समोसा खराब हो जाही, ये मन नहीं खाना चाहिए।
5: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
4: हाँ जी,
3: कागज न्यूज पेपर मा तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
6: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
3: ये कर अलावा प्लास्टिक थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास मा चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
2: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
0: तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फार्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही
1: छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती मां सुपर
2: हिट। खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
7: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल लत निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
8: काहे शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला काय करू?
7: ताहूं यार।
9: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायो डीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
2: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
10: दोस्तों, जून के इन दिनों में आसमान की ये बादलों भरी लुका छिपी बड़ी हसीन होती है। कभी लगता है कि अभी बारिश हो जाएगी और कभी बादल सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका देकर आगे निकल जाते हैं। यह जो बारिश के इंतजार की कशिश है ना, ये दिल में एक मीठा सा एहसास छोड़ जाती है। ऐसे मौसम में जब आप शाम को अपनी बालकनी में खड़े होकर हवा को महसूस करते हैं तो आप किसी और के नहीं बल्कि खुद के सबसे करीब होते हैं। अपने बीते कल को याद करते हुए, अपनी नाकामियों को चखते हुए और अपने वजूद पर मुस्कुराते हुए, यह मौसम खुद का पुनर्निर्माण करने का मौसम है, खुद से प्यार करने का मौसम है। आइए इसी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा।

तंदुरुस्ती बहुत सारे जिनिस के ऊपर निर्भर करते। फिर खाए पिए के मामला मा एक ठन फॉर्मूला हवे, बस ऐसने समझ लो प्लस और माइनस के खेले। देखो आटा चाउर तेल दूध और नमक खरीदे के समय प्लस के निशान ला चुने, ये फोर्टिफाइड फूड होते। ये आप मन ला संपूर्ण पोषण देते और अपन खान पान मा तेल नमक और शक्कर ला थोड़किन कम यानी माइनस करें। है ना सरल? सही खाओ और रहो फिट, तभी तो हो ही छत्तीसगढ़ तंदुरुस्ती।

0: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
1: मम्मी मम्मी पापा आगे।
2: दक्ष, विराट, कन्हैया, तुहर मन भर मैं गरम गरम समोसा भजिया जलेबी लेके आया हूँ।
1: मम्मी प्लेट लाना।
3: प्लेट के का जरूरत है? तुहर ड्राइंग के कागज में खाओ। कतेक प्लेट ला, मैं मांजा धोत रहा हूँ।
4: ये मस्याही लगे है, समोसा खराब हो जाए, ये मन नहीं खाना चाहिए।
3: ऐसने में खात खात उम्र बीत गए, कैसे जी?
2: हाँ जी,
1: कागज न्यूज पेपर माँ तेल्हा फुल्हा खाए पिए के गरम जिनिस ला नहीं रखना चाहिए।
4: एमा केमिकल वाला स्याही लगे रही थे, जिन गरम जिनिस संग रासायनिक क्रिया करके ओला जहरीला बना देते।
1: ये कर अलावा प्लास्टिक, थर्माकोल या डिस्पोजल कप गिलास माँ चाय कॉफी पीना सेहत खराब करते।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
5: आओ ननकू भैया, कैसे हैं? होटल बढ़िया चलत है ना? ग्राहकी वगैरह ठीक है कि नहीं? रोको। अरे भैया, पहली जुन्ना तेल निकाल ले, तेकर बाद नवा तेल डालबे।
6: का है शिव भैया, तेल में तेल नहीं डालू तो जुन्ना तेल ला का करूँ?
5: तहूँ यार।
7: रियूट कुकिंग ऑयल योजना ले बायोडीजल बनाए जाते, जेकर ले आप और आपके वातावरण सुरक्षित रहे।
0: खाद्य सामग्री की सही देखरेख से स्वस्थ बनेंगे हम, स्वस्थ बनेगा हमारा देश। इसमें अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार एवं खाद्य व औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी।
8: साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब सबरंग की इस महफिल को विदा देने का वक्त आ गया है। जून की इस शाम में दिल मुस्कुरा कर कह रहा है कि जुलाई की वो झमाझम मानसूनी बारिश अब बस एक कदम दूर है, जो बहुत जल्द हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को हरियाली की चादर से ढक देगी। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि बाहर मौसम चाहे जो भी करवट ले, अपने भीतर के सपनों और अपनी उम्मीदों को कभी थमने मत दीजिएगा। इसी बात पर सुनते हैं ये सुरीला नगमा।

सबरंग समाप्त हुआ। इसी के साथ आप अपनी रेडियो दोस्त प्रज्ञा को दीजिए इजाजत। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का, फिल्म का नाम

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
2: Partnership with UK is taking many more dimensions.
1: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी

0: हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
0: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
4: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री

0: आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म सलामी का गीत। आवाज है अलका याग्निक की। गीतकार हैं सुरेंद्र साथी, संगीतकार नदीम श्रवण।

आइए सुनते हैं फिल्म जान तेरे नाम का गीत। आवाज है कुमार सानू और आशा भोसले की। गीतकार सैयद राही, संगीतकार नदीम श्रवण।

आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन।

लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत, आवाजें हैं अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित।

आइए अब सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना का गीत। आवाज है अलका याग्निक और सोनू निगम की, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

लीजिए सुनिए फिल्म आ अब लौट चलें का ये गीत, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

0: चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम अपने मुंबई केंद्र से रिले करते हैं।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ओट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो? पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूं मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूं मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूं मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना, इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हों तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10:47 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। और पहला गीत हमने लिया है हम आपके हैं कौन इस फिल्म से, जिसे गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम ने, गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत है राम लक्ष्मण का। और फरमाइश हमारे इन श्रोता साथियों की है। डोंगरगांव से आप हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी है, रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान, अल्फेज खान आप हैं शांतिनगर भाटापारा से, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटे से आप हैं नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा, शारदा और दामनी, देवरी भाटापारा से गनुला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, और भाटापारा दतरंगी से आप हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। तो लीजिए सुनिए हम आपके हैं कौन इस फिल्म का ये गीत।

तभी आपने सुना एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, और लीजिए अब सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गुलाम, इस फिल्म का एक गीत जिसे लिखा है समीर ने और संगीत है जतिन ललित का, और फरमाइश आप सभी की। बेमी तरह से आप हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र वृषकांत सारथी, कोरदा से कलीराम यादव, छतराम और शेरश्याम यादव, रोशनलाल देवांगन, कौशल्य देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, कुमारी भाव्या, प्रियांश देवांगन, आप हैं बिलाईगढ़ से, भाटापरा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, सोनाडी से आप हैं सुब्रत चौधरी, पेंड्रा से आप हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव, और भाटापरा दतरंगी से आप हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा।

और लीजिए अब सुनिए बाजी, इस फिल्म का गीत। ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है श्रोताओं, आवाज़ है उदित नारायण और साधना सरगम की, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है अनु मलिक का। और इस गीत को सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता साथियों ने, भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा, रचनाकार मुंदड़ा, महावीर वार्ड भाटापारा से ही आप हैं श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती ईश्वरी यादव और श्रीमती लक्ष्मी यादव। भाटापारा से आप हैं दानसी रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम और सौरभ रावत। भाटापारा से ही आप हैं रामकुमार राउत, अमरीका राउत, गणेश राउत और कार्तिक युवराज राउत। नर्मदा धाम सुरसुली से आप हैं कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव। बाजारपारा बेमित्रा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा। और आप हैं कोरदा लवन से भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा और वेद किरण वर्मा। तो लीजिए सुनिए बाजी का गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध गीत। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11 बजने को है समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Renuka. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
4: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passport Amendment Rule 2026 will come into force with effect from 1st of next month. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. The existing fee for a 36-page passport is 1,500 rupees and for a 60-page passport is 2,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. National Testing Agency NTA has opened a window today for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. In a social media post, the NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 2,000 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. India's newly appointed High Commissioner to Bangladesh, Dinesh Trivedi, formally assumed office today after presenting his credentials to Bangladeshi President Mohammad Shahabuddin at Bengabhavan in Dhaka. Following the credential presentation ceremony at the Presidential Palace, Trivedi visited the Indian Visa Application Center in Dhaka to inspect its operations and interact with officials. In the FIFA World Cup, Curaçao will take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia in US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 AM IST. And that's the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर कल 5:53 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

उसे समय मिला लीजिए 5:23:35:36:37। वर्क स्टेशन 1। वर्क स्टेशन 2।

नोटिस साइट से समय मिला लीजिए 5:24:42:43:44 हेलो, माइक टेस्टिंग, माइक नंबर 2, 5:24:52